वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओ कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे गल है। बहुत सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

कंचन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो कंचन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

कहते हैं ना, रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होता हो तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोता होता बढ़ते न कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया।
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए है, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के पांच आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं तो उनका स्वागत

0: और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
3: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
2: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
3: एक्सक्यूज मी सर।
2: क्या हुआ?
3: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर। मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
2: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
3: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
2: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। You can keep this book, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
3: 2 दिन बहुत है सर, इसे खत्म करने के लिए।
2: Sure,
3: sure.
1: Hello baby chai.
4: Thank you.
1: आपने आज की न्यूज सुनी?
4: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
1: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
5: Oh no.
4: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है?
1: पता,
4: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
1: और क्या।
6: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है

0: जनगणना के लिए
1: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
2: ये है मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
1: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना हमारा विकास।
3: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
4: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
5: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
4: कहाँ तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
5: एक्सक्यूज मी सर।
4: क्या हुआ?
5: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर।
4: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
5: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
4: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
5: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
4: श्योर
5: श्योर सर।
6: हेलो बेबी चाय।
7: थैंक यू।
6: आपने आज की न्यूज सुनी?
7: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
6: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
8: ओह नो।
7: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
6: और क्या।
9: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

दोस्तों, जिंदगी के सफर में दो मेहमान आते हैं, बिन बुलाए ही दरवाजे पर दस्तक लगाते हैं। एक का नाम है मौत और दूसरा बुरा वक्त कहलाता है। दोनों ही इंसान को उसकी औकात दिखाते हैं। मौत छीन लेती है सांसों की डोर, बुरा वक्त तोड़ देता है दिल का कोर। पर जो इन दोनों से ना घबराए, वही इंसान आखिर में फिर से उठ खड़ा पाए। बुरा वक्त सिखाता है सब्र और हिम्मत, मौत याद दिलाती है जिंदगी की कीमत। इसलिए रोना नहीं, लड़ना सीखिए, क्योंकि हर बुरे वक्त के बाद ही तो आता है हमारी जिंदगी में एक नया उजियारा। उसी तरह से एक नए दिन, नए सुबह की शुरुआत आप सभी कर चुके हैं इस प्यार भरे कार्यक्रम के साथ और प्यार भरी रूटीन के साथ। नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ अब आप सभी अपने दिन की शुरुआत करने वाले हैं और सुबह की डेली की रूटीन को आप सभी इंजॉय करने वाले हैं। जी दोस्तों, आज 21 मई 2026 का दिन, गुरुवार का दिन, तो समय किस तरह से हाथों से फिसलता जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा। बस ऐसे लग रहा है कि महीने सालों कब बीत जा रहे हैं, हाथों से ऐसे रेत की तरह फिसल रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, समय है दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। और सचमुच ये दो मेहमानों की जो हमने बात की, तो ये बिन बुलाए मेहमान हैं जो कि हमारी जिंदगी में दस्तक देते हैं। लेकिन ये आते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में आते हैं, ये सबकी ज़िंदगी में आते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हिम्मत बनाए रखते हैं, क्योंकि हिम्मत से ही तो हम ज़िंदगी को जीना सीखते हैं। जी दोस्तों, तो उसी तरह से आज के कार्यक्रम में भी आप क्या कुछ बातें अपनी ज़िंदगी की सीख के लिए उसे बनाने वाले हैं या फिर लाने वाले हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे या जानने वाले हैं। लेकिन जानने के लिए एक काम करना होगा। कौन सा काम? बस जुड़े रहना होगा अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। छोटा सा काम है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, तो आइए बातचीत के साथ तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देर है तो प्यारे से गीत की, जिससे कि हम अपने कार्यक्रम में थोड़ा सा रुक मनोरंजन की और लेकर चलते हैं। तो इंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

जी दोस्तों, तो इसी प्यारे से गीत के साथ हम अपनी कार्यक्रम में अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं मौसम की ओर। तो आंखों देखा हाल, धर्मशाला के लोग तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से धूप जो है वो निकली हुई है और बाहर निकलना इतनी गर्मी में बहुत ही मुश्किल है। सुबह 8 बजे से ही धूप मतलब इतनी तीखी सी हो गई है ना कि ऐसे तो हम सोचते हैं कि सुबह सुबह फटाफट से काम कर लें और फिर धूप में आराम से अंदर बैठ जाएं, लेकिन सुबह 8 बजे से ही 7:30-8 बजे के करीब जो है इतनी तेज़ धूप जो है घर में दस्तक दे रही है रास्ते में कि निकलना मुश्किल है। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, धर्मशाला के तापमान की हम बात करें तो इस समय लगभग जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, इससे ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि कई बार ऐसा भी हो रहा है हल्के से बादल, लेकिन वो बादल भी इतने ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही बोल सकते हैं। और मौसम का कहर जो है ना वो इन दिनों 2 ही दिन में पता चल गया कि गर्मी का मौसम आ चुका है, जो पहले हमें महसूस नहीं हो रहा था। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र भीषण गर्मी और लू की चपेट में आ गए हैं। ऊना की हम बात करें तो बुधवार का जो है दिन का पारा इस सीजन में पहली बार 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं बद्दी का तापमान 43, कालाअंब 41 और पांटा साहिब का 41 डिग्री, कांगड़ा सोलन से लेकर शिमला तक में लू जैसी स्थिति रही। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से है फिलहाल के लिए मौसम और 21 मई को भी ऊना, कांगड़ा, शिमला और सोलन में जो है लू के लिए अलर्ट है। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। धूप से बचना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि बहुत ज़्यादा ठंड में बारिश से बचना ज़रूरी होता है। जी दोस्तों, तो ज़्यादा धूप में जब हम निकलते हैं तो भी बीमारियां जो है हमें लगने के चांसेस रहते हैं। तो आप सभी बहुत समझदार हैं, बहुत सतर्कता के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरह से बदलते मौसम के साथ हमें अपने आप को ढालना किस तरह से है ये प्लानिंग पहले ही कर लेनी चाहिए। जी दोस्तों, तो आइए इस भागदौड़ के समय में जो है कहीं ना कहीं अपने आप का समय जो है समय के हिसाब से ध्यान आप सभी जरूर रखें। इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ 91.2 MHz पर।

0: दोस्तों, सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बेहद खूबसूरत सा गीत फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का। इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में, और आप सभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों को। अभी तो ढेर सारी जानकारियाँ, और दोस्तों बहुत ही खास दिन है आज का। 21 मई की हम बात करें तो बहुत कुछ है आज के दिन के इतिहास में, तो थोड़ा सा आप उन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए और जानिए कि आज के दिन ऐसी कौन सी खास बातें हैं, ऐसी कौन सी अहमियत है आज के दिन की। तब तक आइए, समय हो गया है प्रादेशिक समाचारों का। जी दोस्तों, 9:20 हो चुके हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ समाचारों के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, वर्तमान में तेजी से बदलते दौर में आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण जरूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान दे रही है राज्य सरकार, भाजपा पर शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी करने का लगाया आरोप। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज सातवां दिन। नगर निगम प्रशासन ने 41 कर्मचारियों को नौकरी से किया बर्खास्त। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज भी लू चलने का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि वर्तमान में तेजी से बदलते दौर में आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने युवाओं से आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमता, नवाचार व स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान भी किया है। धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि युवा केवल रोजगार प्राप्त करने तक सीमित ना रहें, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास करें। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब प्रदेश के बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहती है, ताकि उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया गया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जा रहा है, ताकि बच्चों को अपने ही क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी की, जिससे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आई है। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होंगी। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं, जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। इन चुनावों में 52,349 युवा पहली बार वोट डालेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग, उप प्रधान पद के लिए पीला, प्रधान पद के लिए हल्का हरा रंग, पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार के लिए हल्के नीले रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। उधर कांगड़ा जिला के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में पंचायत चुनावों के लिए 26 मई को मतदान होगा और जिला प्रशासन ने इस बार विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता ली जाएगी। उन्होंने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है।
2: पूरे जिले भर में 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को मुकम्मल किया जाएगा। बड़ा बंगाल में भी इस बार एक हम पोलिंग स्टेशन वहाँ पर भी खोलने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारा पंचायत का चुनाव गर्मियों में हो रहा है और काफ़ी लोग बड़ा बंगाल में माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो लोग भी मत अपने मत के उपयोग के अधिकार से वंचित ना रहे। इस दृष्टि से ये मामला माननीय आयोग के समक्ष रखा गया था और माननीय आयोग ने निर्देश दिया कि हमने वहाँ पर भी मैं पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करना है।
1: देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की स्वीकृति से दूर करना है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 7वां दिन है। इस बीच हड़ताल पर बैठे सहायक कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 41 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इनमें सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। नगर निगम प्रशासन ने आउटसोर्स कंपनी को पत्र जारी कर 270 आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सीटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने इस कार्रवाई को कर्मचारियों के साथ धोखा करार दिया है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीते कल ऊना में सर्वाधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के मैदानी जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है। प्रदेश में अप्रैल से सितंबर तक मिलने वाला लुंगड़ू अपने विशेष औषधीय गुणों, अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के कारण विशेष महत्व रखता है। इसे कई क्षेत्रों में लिंगर तथा खसरोड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम डिप्लाजियम मैक्सिमम है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता के अनुसार ये पौधा केवल एक मौसमी सब्जी नहीं बल्कि पहाड़ी संस्कृति, परंपरा और खान पान की जीवंत पहचान है।
3: अपने औषधीय गुणों, अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के कारण विशेष महत्व रखता है। इसे कई क्षेत्रों में लिंगड़ तथा खसरोड़ के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, फोलिक एसिड और फाइबर से भरपूर यह पौधा स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। लुंगड़ू केवल स्वाद और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पहाड़ी लोगों के लिए अतिरिक्त आजीविका का भी महत्वपूर्ण साधन है। आज लुंगड़ू का मदरा भी कांगड़ी धाम और विभिन्न सामाजिक समारोहों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किया गया इसका अचार भी लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। हिमाचल की वादियों में उगने वाला लुंगड़ू सचमुच प्रकृति का ऐसा उपहार है जो स्वाद, स्वास्थ्य, संस्कृति और आजीविका चारों को एक साथ जोड़ता है। प्रकृति का ये अनमोल उपहार न केवल हिमाचल की पारंपरिक विरासत को जीवित रखे हुए है, बल्कि पहाड़ी लोगों की मेहनत, संस्कृति और आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी भी बयां करता है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: शिमला जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा जिले के शिलारू में 24 मई को एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। संघ के महासचिव सीपी मेहता ने बताया कि इनमें अंडर 20 आयु वर्ग के पुरुष व महिला खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से समय पर पंजीकरण करवाने की अपील की है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, विजिलेंस को आरटीआई की दायरे से बाहर करने की अधिसूचना पर रोक। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, हिमाचल के कई जिलों में ड्राई होने लगे पेट्रोल पंप। मुख्यमंत्री के हवाले से हिमाचल दस्तक ने सुर्खी दी है, भाजपा का फोकस संस्थान खोलना, हमारा गुणात्मक शिक्षा। हिमाचल एंट्री टैक्स के खिलाफ 1 जून को 55 एग्जिट पॉइंट 4 घंटे रहेंगे जाम, शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है। संघर्षकारी संगठनों ने जारी किया रेसिप्रोकल टैक्स ड्राफ्ट। दैनिक जागरण की एक खबर है, मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले में सरकार व संजय गुप्ता को नोटिस। मौसम पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है, ऊना में 44 डिग्री और शिमला में 30 डिग्री के साथ इस सीजन के सबसे गर्म दिन, कल से बारिश संभव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, वर्तमान में तेजी से बदलते दौर में आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण जरूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान दे रही है राज्य सरकार, भाजपा पर शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी का लगाया आरोप। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 7वां दिन, नगर निगम प्रशासन ने 41 कर्मचारियों को नौकरी से किया बर्खास्त। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज भी लू चलने का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

तो क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

दोस्तों इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सभी अपने अपने रेडियो सेट से सुन रहे हैं, अपनी डेली रूटीन के साथ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर या अच्छी चप्पल पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम भी चलना मुश्किल है, बल्कि एक कदम भी चलना नामुमकिन है। यानी बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कोई बाहर की ऐसी फोर्स नहीं है जो हमें जिंदगी में असफलता की ओर लेकर जाती है। जो हमारे अंदर के विचार हैं, जो कई बार हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं या खुद को दूसरों से कम मांगते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद पे विश्वास नहीं होता, तो उसी वजह से हम उस जुनून को कम कर देते हैं, उस लगन को कम कर देते हैं अपनी अंदर की, जो कि हमें असफलता की ओर लेकर जाती है। तो बाहर की चुनौतियों से डरने से पहले अंदर की चुनौतियों का सामना कीजिए। सबसे पहले तो उन चुनौतियों को पहचानिए, उसके बाद उन पे काम कीजिए। ये नहीं कि बाहर की चुनौतियों को देखकर एक काम छोड़कर दूसरा पकड़ लिया, दूसरा छोड़कर तीसरा पकड़ लिया, लेकिन सेटिस्फेक्शन या एक संतुलन जो है वो कहीं भी ना मिला। तो वो कहाँ से मिलेगा? जब आपका अंदर से जो एक कहते हैं कि विचारों का एक फेर है वही कमज़ोर है, उसमें ही जान नहीं है, तो फिर खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। तो ज़रूर इस पे हमें सोचना चाहिए और काम भी करना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

तो सोहेल का यज्ञिक उदित नारायण की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा मीठा सा गीत। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रोचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और एक काम आप सभी के लिए दिया था कि आज के दिन के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए और जानिए कि आज के दिन क्या

जी दोस्तों, तो इतना प्यारा सा हिंट जो था आप सभी को दिया था, और अब तो उम्मीद है मुझे कि आप सभी समझ ही चुके होंगे। इस प्यारे से गीत को आप सभी ने एंजॉय किया, और इसी के साथ जी दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, बता ही देते हैं। दोस्तों, भारत में चलो चाय पर मिलते हैं सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का तरीका है। घर में मेहमान आए, दोस्तों से मुलाकात हो, या ऑफिस में ब्रेक हो, चाय हर मौके पर मौजूद रहती है, और इस हर एक पल को वो खास बना देती है। जी दोस्तों, भारत में करोड़ों लोगों के दिन की शुरुआत होती है एक चाय के कप के साथ। रेलवे स्टेशन हो, ऑफिस की कैंटीन हो, या फिर घर की रसोई, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि लोगों की आदत, बातचीत और रिश्तों का हिस्सा बन चुकी है। और 21 मई की हम बात करें तो दुनिया भर में इंटरनेशनल टी डे जो है आज के दिन मनाया जाता है, यानी कि चाय दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय, आज के दिन 21 मई 2026 के दिन अब सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो जिसके साथ हमारी सुबह की शुरुआत होती है उसे हम कैसे भूल सकते हैं, चाय। लेकिन दोस्तों, इसके भी कुछ रूल्स हैं। सिर्फ एक चाय का कप जैसे मन किया वैसे ही नहीं पी लेना होता है, उसके भी लिए हमें थोड़ी सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। गाँव की बात करें तो गाँव में सचमुच सुबह बाकी कामों की तरफ ध्यान तब जाता है जब बेड पे बेड टी मिल जाए ना, तो फिर एक एनर्जी, एक उत्साह हमारे दिन की रूटीन के साथ वो शुरू हो जाता है। बारिश की बात करें, सर्दियों की बात करें, तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े, सिर्फ पकौड़े खाने से वो एंजॉय नहीं आता, साथ में चाय होना तो उसका मजा जो है वो दोगुना हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज का दिन उसी लिए खास है। तो अब तो आप सभी जान ही चुके हैं, तो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे दोस्तों कि चाय हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्या है क्या नहीं है, और किस तरह से हमें चाय पीनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के अपनी अपनी एक अहमियत है, अपनी अपनी एक बोलते हैं ना खासियत रहती है, तो वो खासियत जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, उस खासियत की ओर पहुँचे, उससे पहले इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत।

सो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया सुरेश पाडिकर और आशा भोसले की आवाजों के साथ। इस समय आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रचिका की आवाज के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अभी तो ढेर सारी बातें आप सभी के साथ करने को है, ढेर सारी जानकारियां भी आप सभी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का। तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

तो से इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रचिका के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन हरमशाला। दोस्तों, इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा असल में वही देता है जिस पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ज्यादातर रिश्ते जो हैं वो स्वार्थ की बुनियाद पर टिके रहते हैं। वास्तव में कोई किसी का अपना नहीं होता, मतलब की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होता। जो बुरे वक्त में आपका साथ दे बस वो ही आपका अपना होता है, बाकी तो सब झूठा सपना होता है। न शक्ल देखती है न सूरत देखती है, काम के समय जो है ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत देखती है। जी दोस्तों, जब हम अपनी जिंदगी में किसी के साथ रिश्ता निभाने लगते हैं, मतलब होता है हमें कोई काम होता है, तब हम लोगों की जो है कोई शक्ल नहीं देखते, कोई जो है उनके बिहेवियर को नहीं देखते हैं, कोई कुछ नहीं देखते। लेकिन जब हमें, मतलब कि कई बार होता है ना, दूसरों को हमारी ज़रूरत होती है या रिश्ते निभाने होते हैं, तब हमें शक्ल सबसे पहले आ जाती है, उनका बैकग्राउंड स्टेटस सबसे पहले आ जाता है, उनका बिहेवियर सबसे पहले आ जाता है कि नहीं ऐसे हैं और हम इनके साथ ऐसे नहीं रह सकते हैं। तो काम की वरी, जब काम की ज़रूरत होती है तब ये सारी चीज़ें क्यों नज़र नहीं आती, तब भी तो आनी चाहिए ना। जब हम इंसान हैं तो हमारी ये जो सोच है ये बदल क्यों जाती है। जब अपना स्वार्थ हो तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्वार्थ पूरा हो जाता है हम आ जाते हैं अपने उस ईगो में। तो ये बातें जरूर

ध्यान रखने जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी में ये छोटी छोटी सी बातें ही हैं जो हमें कहां से कहां पहुंचा देती हैं, ऊंचाइयों तक भी लेकर जाती हैं, लेकिन कई बार हो तो जमीन पर भी लेकर आ जाती हैं। तो जरूर इन बातों का खास ख्याल आप सभी रखें। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रोचिका की तरफ से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, मोहब्बतें मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा एनर्जी से भरा हुआ गीत आप सभी ने एंजॉय किया, बहुत ही मीठा सा। और इसी प्यारे से गीत के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए अपनी बातचीत का रुख करते हैं एक बहुत ही खास जानकारी की ओर, क्योंकि बातों के साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ जानकारियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं खास जानकारी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई होने लगे हैं। सप्लाई पूरी ना आने के कारण कई जगहों पर पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं, तो कई जगह खाली होने के कगार पर हैं। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। मनाली, रामपुर, बरमाना, दाड़लाघाट में पेट्रोल पंपों पर ट्रकों को पूरा डीजल नहीं मिल पा रहा। हालात ऐसे हो गए हैं कि वद्राश से लेकर किन्नौर सीमा के बधाल तक नेशनल हाईवे पर स्थित 7 में से 5 पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। तेल नहीं मिलने से लोगों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निरसो, दत्तनगर, पाटवंगाल, ज्यूरी और बधाल के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल जो है वो नहीं मिल रहा। जी दोस्तों, तो पहले गैस सिलेंडर की वजह से जो है बहुत सारे लोगों को दुकानें बंद करनी पड़ी, क्योंकि जिनका एक कहते हैं ना रोजी रोटी, कई जो है खाना बनाते हैं, ढाबों में काम करते हैं या रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, तो जब सिलेंडर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ तो सिलेंडर से ही ज़्यादातर काम होता है, तो जब सिलेंडर ही नहीं होंगे तो कैसे वो अपने उस काम को बढ़ावा दे पाएंगे, कैसे उसे पूरा कर पाएंगे। और कुछ लोग तो गांव की हम बात करें, क्योंकि हम धर्मशाला के लोग हैं, एक तरफ स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी से बाहर जाएं, थोड़ा सा आगे आगे जाते जाएं, तो गांव के लोग हैं जो कि छोटी मोटी दुकान चाय के सहारे, आज चाय की ही बात कर रहे हैं, और चाय के सहारे जो है वो अपनी रोजी रोटी अपने घर को चलाते हैं। लोगों को चाय पिलाकर, चाय के साथ पकौड़े या समोसे कुछ भी, तो ऐसे भी लोगों के घर चलते हैं। तो अगर ऐसे में सिलेंडर नहीं मिल रहे थे तो लोगों को परेशानियां हो रही थी, अब देखिए अब पेट्रोल और डीजल भी नहीं मिल पा रहा, तो अब गाड़ियों के लिए दिक्कत। जिन घरों में चार चार पाँच पाँच गाड़ियाँ हैं तो कैसे वो चला पाएंगे, और कहते हैं ना ज़्यादा दिनों तक हम ना चलाएं तो वो फिर वेस्टेज हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं से मुसीबतें जो है हमें घेर ही रही हैं। देखते हैं समय कहाँ लेकर जा रहा है और कहाँ लेकर जाना चाहता है। तो हमें तो हिम्मत बनाए रखनी है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी की परीक्षाएँ हैं, चुनौतियाँ हैं, इनसे लड़कर आगे निकलना है और खुद को संभालना है। तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

फिर उसको छोटी सी आशा जीने के ज़िंदगी में बहुत बड़े मुकाम तक कई बार लेकर जाती है। तो एक छोटा सा कप चाय का भी हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है सचमुच। और दोस्तों गांव की बात करूँ ना, तो सचमुच हमारे यहाँ तो चाय का इतना क्रेज़ है ना कि सुबह जब तक चाय ना मिले तो ऐसा लगता ही नहीं कि सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसा लगता है कि बस अभी तो उठे भी नहीं है सोकर, जैसे ही चाय पी ली बस आंखें एकदम से खुल जाती हैं और फिर लगता है कि नहीं अब सुबह हो गई। तो इतनी अहमियत है हमारे यहाँ, धर्मशाला की बात करें, कांगड़ा की बात करें, तो चाय की ये अहमियत। और कुछ लोगों का कहना होता है कि चाय ज़्यादा पीने से हम काले हो जाते हैं, रंग काला हो जाता है, हम नहीं पियेंगे, हम सिर्फ दूध पियेंगे, क्योंकि दूध जो है वो वाइट कलर का होता है और उसमें हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, ज़रूरी नहीं है हर किसी को एक जैसे जो है इसके इम्पैक्ट हो। चाय के जो है हो सकता है कि किसी को अच्छी ना लगे, क्योंकि बीमारियाँ जो हैं आज के समय में बहुत सारी हमारे शरीर को कर बैठी हैं, एक जाल बना कर बैठी हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि किसी किसी को चाय शूट ना करे तो उसकी वजह से उन्हें एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक हो सकती है। तो उसके भी जो है सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। जब हम खाली पेट चाय पी लेते हैं तो उससे हमें ज्यादा दिक्कत होती है। तो जब हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो ज्यादा नहीं, एक दो बिस्किट खा लीजिए या ब्रेड खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए जिससे कि आपको चाय का कोई नुकसान ना हो। अभी होने लगा, पहले तो खैर लोग फटाफट से चाय के साथ परांठे या चपातियां खा के निकल जाते थे और काम पे, और फिर खाने का कोई अता पता भी नहीं होता था। तो जितना हम भाग दौड़ करते हैं तो ऐसे में हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमें टाइम टू टाइम चीज़ों को मैनेज करना कैसे आना चाहिए ये आपको थोड़ा सा रूटीन में लाना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम उस पे खरा नहीं उतर पाएंगे। तो शरीर को ध्यान में रखते हुए, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही हमें हर चीज़ को लेना है, वो चाय की ही बात नहीं है दोस्तों। आज के समय में मोटापा भी बहुत ज़्यादा है, तो हम बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी जो है सलाह से जो है हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम डाइटिंग पे हो जाते हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है नुकसानदायक है, लेकिन उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते। तो ज़रूर सोचिए, विचारिए, सोचना ही हमारी ज़िंदगी को लिए जो है एक बेहतर ऑप्शन है। ज़्यादा भी नहीं सोचना कि स्ट्रेस का रूप ले ले, थोड़ा सा तरीके से दोस्तों। कोई भी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में तो जहाँ कुछ अच्छी बातें हैं वहाँ कुछ उसके नेगेटिव पहलू भी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता के साथ जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ना है।

दोस्तों कार्यक्रम में आप सभी ने एंजॉय किया ये प्यारा सा पंजाबी गीत। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ आप सभी अपने दिन की रूटीन की शुरुआत और दिन का वेलकम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और नजर डालते हैं कुछ खास जानकारियों में। तो बिल्कुल नगर निगम के चुनावों का शोर जो है वो तो थम चुका है, लेकिन अब जो है वो पंचायती चुनावों का शोर एकदम से बढ़ गया है। खैर इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि गुपचुप गुपचुप जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। इतना माहौल जो है आपको लगता है ना कि जैसे जब चुनाव आते हैं तो थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप का हो जाता है, लेकिन नहीं, ये इस बार के चुनाव कुछ अलग ही माहौल जो है वो हमारे सामने रख रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, बस एक दूसरे के घर में जाके पता कर रहे हैं कि भाई किसके दिमाग में क्या चल रहा है और किस तरह से माहौल जो है किस तरफ जाने वाला है। तो यही सब चल रहा है, तो मुश्किल है जानना क्योंकि आज के समय में लोगों के दिमाग को पढ़ पाना, दिमाग की से जुड़ी कुछ बातों को जान पाना इतना आसान नहीं है। और आज के समय के लोग वैसे भी नहीं हैं जो किसी की बातों में बहक जाएं और फिसल जाएं उनकी ओर, तो बिल्कुल नहीं। तो इसी से जुड़ी एक खास जानकारी आप सभी के लिए दोस्तों, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ वोट डालना है, लेकिन वहाँ तैनात ड्यूटी में जो लोग जो कर्मचारी रहेंगे उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो वोट कब करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहाँ उनकी ड्यूटी है वहीं उनका वोट डलेगा, क्योंकि गांव में ड्यूटी लगना पॉसिबल नहीं है ना। तो आप सभी को बता दें हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रदेश भर में प्रचार अभियान तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है और राज्य की जिन पंचायतों में 26 मई को चुनाव होने हैं उन पंचायतों में 24 को जो है प्रचार बंद हो जाएगा, यानी कि आज 21 हो गई हैं तो 3 ही दिन जो हैं वो रहे हैं प्रचार के लिए, जहां 26 मई को वोट डलने वाले हैं जी दोस्तों। वहीं इस दौरान चुनावी टीमें भी तय कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने बूथों के लिए रवाना होंगी और इस दौरान 26 मई को होने वाली पहली फेज की वोटिंग प्रक्रिया के चलते अपने विकास खंड के अंतर्गत चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारी जिनमें सेक्टर अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, पुलिसकर्मी तथा अन्य कर्मचारी शामिल हैं, वे पोल ड्यूटी वैलिड पेपर के माध्यम से जो है वो मतदान कर सकेंगे। हालांकि सुविधा केवल संबंधित ब्लॉक स्तर के चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को ही मिलेगी। तो ये बहुत ही खास जानकारी है दोस्तों, और भी बहुत सारी जो है चुनाव से जुड़ी जानकारियां हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर से वापिस आते हैं अपने इस खास माहौल की ओर, यानी कि जानकारियों की ओर।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

दोस्तों इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों चार कदम चल के जिंदगी रुक क्यों जाती है, ये कौन सा खेल है जहाँ हर खुशी देर से आती है, ना कोई सिग्नल ना कोई आहट राहों में, फिर भी हर मोड़ पे उम्मीद ठहर से जाती है। हमने तो सीखा था चलते रहना उम्र भर, मगर हर मंजिल से पहले सांस भर जाती है। ये वक्त भी अजीब सौदागर निकला, हंसी कम देता है और खामोशी ज्यादा थाम।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया और कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कुछ खास जानकारियों की ओर। तो आइए जानते हैं एक और खास जानकारी।

दोस्तों नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए पंजाब सरकार ने एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी नीट परीक्षार्थियों के लिए पंजाब रोडवेज की बसों में किराया पूरी तरह माफ करने का फैसला लिया है। 21 जून 2026 को होने वाली नीट री एग्जाम के मद्देनजर छात्र 20, 21 और 22 जून को 3 दिनों तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। जी दोस्तों, पंजाब सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक इस मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए छात्रों को किसी विशेष पास या टिकट की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस में सफर करते समय परीक्षार्थियों को कंडक्टर को केवल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी अपना नीट एडमिट कार्ड देना होगा या दिखाना होगा। तो ये बहुत ही खास जानकारी दोस्तों आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से रुक करते हैं मनोरंजन की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ये प्यारा सा मस्ती भरा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, वैसे तो वो और भी बहुत सारे स्पेशल डेज जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन चाय की कुछ खास बात है, इसलिए चाय पे बात कर रहे हैं। क्योंकि चाय के साथ ब्रेक भी होता है, चाय के साथ एंजॉय भी होता है, चाय के साथ थोड़ा सा

से छुटकारा भी मिलता है, तो चाय को कैसे छोड़ सकते हैं। कांगड़ा के खास लोगों के लिए तो ये बहुत ही खास है। जी दोस्तों, भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सुबह आंख खुलते ही कई लोगों को सबसे पहले चाय की जरूरत महसूस होती है, तो वहीं दिन भर की भाग दौड़ और थकान के बीच भी एक कप चाय राहत देने का काम करती है। शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ चाय को मजाक मजाक में इंडियन एनर्जी ड्रिंक भी कहा जाता है। दोस्तों, हर साल तभी तो आज के दिन को इस खास तौर पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, देश भर में चाय बनाने और पीने के अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। कहीं मसाला चाय पसंद की जाती है तो कहीं अदरक और इलायची वाले चाय का स्वाद लोगों को खूब भाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चाय की शुरुआत कहां से हुई और ये भारत तक कैसे पहुंची? ये है ना सबसे बड़ा सवाल। जी दोस्तों, तो आज के दिन का उद्देश्य दुनिया भर में चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व को बढ़ावा देना है। साथ ही ये दिन चाय उत्पादन से जुड़े लाखों किसानों और मजदूरों के योगदान को सम्मान देने

दोस्तों, चाय का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि करीब 5000 वर्ष पहले चीन में पहली बार चाय की खोज हुई थी। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार चीन के सम्राट शेननुंग ने के गर्म पानी के बर्तन में अचानक कुछ पत्तियां गिर गई थी, जिसके बाद पानी का रंग और स्वाद बदल गया। सम्राट को ये पेय इतना पसंद आया कि यहीं से चाय का सफर शुरू हो गया। धीरे धीरे चाय एशिया के कई देशों तक पहुंची और फिर पूरी दुनिया में लोकप्रिय होती चली गई। दोस्तों, भारत में चाय का बड़े स्तर पर प्रसार अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने असम और दार्जिलिंग जैसे इलाकों में चाय की खेती शुरू करवाई। इसके बाद चाय भारत की संस्कृति और लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गई और आज देश के लगभग हर घर घर में जो है वो सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है। तो हुआ ना ये खास दिन। जी दोस्तों, आज भले ही चाय भारतीयों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हो, लेकिन इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों के दौर में हुई थी। जी दोस्तों, तो आइए इसी के साथ पढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत इसी बात पे।

दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग इतने शातिर होते हैं कि चुपके चुपके चुगली करके अपनों को ही आपस में लड़ा देते हैं। और ये जो समय चल रहा है, ये तो सचमुच वैसा ही चल रहा है। बिल्कुल दोस्तों, चुनावी माहौल ही कुछ ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कौन कब जो है चुपके से मार कर गया। दोस्तों, दूसरों को गलत साबित करने के लिए चाले चलते हैं, मगर खुद पाक साफ बने रहते हैं। मासूम होने का ढोंग करते हैं, मगर ऐसे लोगों का भी एक दिन बुरा दिन जरूर आता है। उस दिन उनकी सारी चालें उल्टी पड़ जाती हैं, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा होता है। ये सबका हिसाब समय समय के हिसाब से जरूर करता है। जी दोस्तों, हम खुद को इतना चालाक समझते हैं, खुद को इतना शातिर समझते हैं कि किसी के भी साथ कुछ भी गलत करने से पहले नहीं सोचते, लेकिन ये भूल जाते हैं कि समय के साथ जो है इसका जवाब हमें ज़रूर मिल सकता है। तो आज का ये 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे थे और अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117091710917091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया।
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए है।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े, इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो पोषण।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
10: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा।

0: देगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
3: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
2: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
3: एक्सक्यूज मी सर,
2: क्या हुआ?
3: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
2: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
3: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ी। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
2: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, और मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
3: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
2: श्योर
3: श्योर सर।
4: हेलो बेबी चाय।
5: थैंक यू।
4: आपने आज की न्यूज सुनी?
5: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
4: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
6: ओह नो।
5: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
4: और क्या।
7: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, हम कई बार सुनते हैं कि जो बीमारियाँ होती हैं वो हमें बिल्कुल तहस नहस कर देती हैं, हमारे पूरे परिवार को तहस नहस कर देती हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उन बीमारियों से बाहर आते हैं, या अंग जिनके फेल हो जाते हैं उनको बहुत ही कम अंग मिल पाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिन्हें कोई अंग मिल जाए या जिन्हें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि हमारे देश में अंगदान के ऊपर से ही इतनी कम जागरूकता है कि इतने कम लोग अंग डोनेट करते हैं, अंगदान करते हैं, कि जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है और उसके मुकाबले में जिन लोगों को अंग मिलता है उनकी संख्या बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूँ जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है और मैं बोलूँगा कि लकी रहे भी और लकी ना भी रहे। लकी इसलिए नहीं थे क्योंकि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी परेशानियाँ झेली, और लकी इसलिए भी रहे कि बहुत कम समय में इन्हें अंग मिल गया जिससे इनकी जान बच पाई और आज की डेट में ये बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है राहुल और ये बागपत के रहने वाले हैं जो दिल्ली के पास पड़ता है हरियाणा में। राहुल, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार।
3: नमस्कार। पहले तो सर मैं आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करना चाहूँगा, फिर मैं अपने बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा।
2: जी राहुल जी, हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि आप करते क्या हैं, पढ़ते हैं या काम करते हैं, और जो ये आपकी तकलीफ थी वो कब शुरू हुई और कहाँ शुरू हुई, और हृदय प्रत्यारोपण, दिल का जो प्रत्यारोपण है वहाँ तक बात कैसे पहुँच गई?
3: मैं शुरुआत से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दे रहा था, 12वीं क्लास का एग्ज़ाम मतलब बोर्ड एग्ज़ाम, और तो उस दौरान की बात है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम के और मुझे फीवर आया। फीवर आने पर मैंने उस पर ध्यान कम दिया और नॉर्मल क्लिनिक से 3 दिन बाद दवाई ली और फीवर तो ठीक हो गया, फिर खांसी ने अपनी जगह बना ली। खांसी की वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। इसी दौरान मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हुए और मैं छुट्टियों में अपने गांव चला गया। गांव जाने के बाद मुझे और वीकनेस फील होने लगी, कमज़ोरी लगने लगी, तो वहीं से ही मैं मेरे गांव के पास एक बड़ौद सिटी है, बड़ौद में गया। बड़ौद में जाने के बाद एक डॉक्टर प्रदीप जैन हैं, उन्होंने मेरी बीमारी को जांचा और पता लगाया कि क्या है। तो वो एक DCMP एक बीमारी है जिसका आपका नाम डायलिटेड कार्डियोमायोपैथी है। इसका इलाज तो उनके पास था पर उनके पास मशीनों की कमी होने के कारण उन्होंने कहा कि आप दिल्ली के लिए मुझे रेफर करा लीजिए और आप एम्स में दिखाइए अपने आप को।
2: आपने फाइनली दिल्ली गए और हॉस्पिटल में दिखाया, तो आप एम्स ही गए या किसी और हॉस्पिटल में गए?
3: शुरुआत में मैंने अपने आप को गुड़गांव के RTMS हॉस्पिटल में दिखाया था जब मेरी उम्र 17 साल में चल रहा था
2: जी, बट वहाँ पर कोई पकड़ में नहीं आया,
3: और फिर उन्होंने भी बोला कि आप एम्स में आप ट्रीटमेंट कराइए। उन्होंने भी मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर जुनेजा।
2: तो फाइनली एम्स में आप गए, वहाँ पर फिर क्या हुआ?
3: एम्स में मैं डॉक्टर जुनेजा अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पर, और मैं डॉक्टर संदीप सेठ के अंदर मेरा ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर संदीप सेठ ने मुझे 15 दिन तक मेरे बेसिक टेस्ट किए और टेस्ट के दौरान मुझे ऐसा लगता था कि ये तो पता नहीं क्या करेंगे, 15 दिन तो ऐसे ही निकल गए, तो मैं अभी ऐसे ही कुछ दिन बाद इस दुनिया से चला जाऊंगा। पर ऐसा नहीं था, मुझे एम्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, एम्स में जो भी डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को देखता है तो उसकी बीमारी को गहराई में जानने की कोशिश करता है और उसको जड़ से ठीक करने का उपचार खोजने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ और 15 से 16 दिन बाद जो दवाइयाँ डॉक्टर संदीप सेठ ने स्टार्ट की तो उनसे मैं दिन प्रतिदिन ठीक होता चला गया।
2: जी, तो फाइनली जब आप ठीक हो गए बिल्कुल, तो उसके बाद अंग प्रत्यारोपण, आपके दिल के प्रत्यारोपण तक बात कैसे पहुंची जब आप एक बार ठीक हो चुके थे?
3: जी, ये एक मेरे लिए भी अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ थी कि मुझे पता नहीं था और ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इसका शुरुआत यहाँ से हुई कि मैं 2017 तक मैं एकदम ठीक था, सारे अपने काम करता था, कॉलेज भी मैंने कंप्लीट कर लिया था और जॉब की तलाश में मैं घूम रहा था। उस दिनों सर्दियों का टाइम था, 11 तारीख दिसंबर की 11 तारीख थी और 2017 में मुझे सुबह के टाइम 11 तारीख को एक पैरालिटिक अटैक आता है और जिसमें कि मेरे परिवार को और मुझे ये नहीं पता था कि एक अटैक आना और एक पैरालाइज होना, स्ट्रोक आना क्या होता है, इसकी जानकारी से हम अवगत नहीं थे। और जैसा कि मेरी तबीयत खराब होती गई, मेरे मदर ने जब तक मेरा फेस नहीं देखा था तो वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाई थी, उनको भी पता नहीं चला था कि इसको हुआ क्या है। बाद में

0: फ्रेंड है वो आया, आने के बाद उसने बोला चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं।
1: तो फिर आप सीधा एम्स गए?
0: सीधा हम एम्स आए और एम्स आने के बाद इमरजेंसी में एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद जाते ही पैरालिसिस में एक इंजेक्शन लगता है, उसका नाम मुझे पता नहीं है, और
1: उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो ये दिल की वजह से था पैरालिटिक अटैक, जो दिल की आपको पहले प्रॉब्लम हुई थी?
0: नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर से पूछने के बाद मुझे पता चला कि लंबे समय तक दवाइयाँ खाने से और खान पान में थोड़ा सा बदलाव होने से
1: जी,
0: तो ये मुझे स्ट्रोक आया था और ये मुझे सोते सोते आया
1: जी।
0: तो एक दिन तक मैं इमरजेंसी में रहा, फिर नेक्स्ट डे मुझे उसी दिन मेरी जांच, दिमाग की भी जांच करने के लिए न्यूरो से डॉक्टर आए और दिल की जांच करने के लिए कार्डियोलॉजी से डॉक्टर आए। तो फिर बाद में मेरे डॉक्टर संदीप सेठ सर हैं, उन्होंने अपनी टीम को भेजा और डिसाइड किया कि इसको आईसीयू में लेकर आते हैं। और जब तक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मेरा पल्स रेट 18-19 ऐसा चल रहा था एक मिनट में,
1: इतना कम हो गया
0: जी। फिर डॉक्टर ने कोशिश की, कोई दवाइयाँ देने की कोशिश दी भी मुझे, तो वो डाउन होता चला गया। फिर कुछ घंटों बाद मुझे उल्टियाँ आनी चालू हुई, तो पूरी रात में 3 बार तो उल्टियाँ आई, जिसकी वजह से मेरे शरीर में इतनी कमजोरी आ चुकी थी कि मैं सांस नहीं आ रही थी मुझको। तो फिर किसी डॉक्टर से बात करने के बाद आईसीयू के डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी और जिससे कि मैं बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, और मेरी आँख मॉर्निंग में अगले दिन 9 बजे खुली, जो कि डॉक्टर संदीप सेठ ने आँखों में उठाया था।
1: तो राहुल, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव। ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का। इस ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा, एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: दोस्तों हम वापस आ गए हैं इस ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं राहुल से जो कि हार्ट रेसिपिएंट हैं और 2018 में इनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था जी। सो राहुल आपने ब्रेक में जाने से पहले बताया कि जब आपको स्ट्रोक आया और फाइनली आप कार्डियोलॉजी यूनिट में पहुंच गए एंड आपके जो डॉक्टर पहले से आपको ट्रीटमेंट कर रहे थे आप उनके अंडर में ट्रीटमेंट आपका चालू हुआ, उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ये हुआ कि डॉक्टर ने एक टीम बुलाई, इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया ताकि हार्ट दोबारा रिकवर कर सके, हाँ जी, जो कि सफल नहीं रहा। थोड़ा ठीक तो हो गया था मैं, पर लेकिन हार्ट की में इतनी दिक्कत आ चुकी थी कि डॉक्टर ने मेरी फैमिली को बता दिया था अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो इसको अगर दोबारा ऐसे ही कोई अटैक आ गया और आएगा 99% ये भी बोला तो आप हम इसको नहीं बचा पाएंगे और आप इसको टाइम से हॉस्पिटल नहीं ला पाएंगे, तो जिसके वजह से ये ट्रांसप्लांट की नौबत आई और मेरी फैमिली को बताया गया। और मेरे पापा मेरी दादी से पूछने के बाद मेरी दादी को उन्होंने बताया तो मेरी दादी ने साफ इनकार कर दिया था कि हमें कोई भी किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को ये बोल दिया था कि ऑपरेशन कराते लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मेरे पापा को डांटा भी था कि तू लड़के का नाश क्यों कर रहा है, ऐसा वर्ड बोल के सीधी लाइन में।
1: उनको बताया नहीं गया था कि आपके जो दिल है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है और नए हार्ट के जरिए ही आपकी जान बचाई जा सकती है?
2: ऐसा उनको बता दिया था, जैसा कि उनकी उम्र 85-86 साल है तो ग्रामीण औरत हैं, ग्रामीण लेडीज हैं, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं है और गांव तक तो ये बातें पहुंचती नहीं। जब तक शहरों में ही ये बातें नहीं पता है किसी को कि ये हृदय प्रत्यारोपण भी हो जाता है
1: बिल्कुल,
2: तो बुजुर्गों तक कैसे पहुंचेगा? तो उन्होंने उस टाइम सख्त मना किया था, फिर भी हमने उनको बताया और समझाया और मेरे परिवार ने और मेरी दादी ने हाँ करा। तो डॉक्टर्स ने अपनी तैयारी की हुई थी और मुझे एक महीना ओवरकप के लिए हॉस्पिटल में रखा और 31 जनवरी 2018 को डिस्चार्ज दिया गया मुझे कि जाओ घर पे रहो और एक डेढ़ हफ्ते में फिर से आना, हम आपको टेस्ट करेंगे कि घर पे आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ लगा तो नहीं है, आपकी तबीयत तो खराब नहीं है ऐसा कुछ।
1: ये हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद?
2: नहीं, पहले
1: पहले पहले। तो आपने फिर अपने आपको वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करवाया?
2: वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करा चुका था जिसमें कि मेरा तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई थी, मेरी फैमिली को ज़्यादा मशक्कत नहीं की गई थी,
1: करनी पड़ी थी
2: जिसमें कि सारा काम ऑल इंडिया मेडिकल के और वो डिपार्टमेंट ने किया
1: जी। उस तो करीब कितने दिन आपको, कितने महीने आपको वेट करना पड़ा?
2: और वो डिपार्टमेंट के अनुसार तो ये बोला गया था कि 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं
1: जी,
2: और 6 महीने भी लग सकते हैं।
1: ये पूरा डिपेंड करता है कि कितने डोनेशन कब होता है।
2: हाँ जी, ये रिसिपिएंट के ऊपर, डोनर फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि कब डोनर मिलेगा और कब आपको मिलेगा,
1: आपका नंबर आएगा
2: जी।
1: आपको पता था आपका नंबर कौन सा नंबर है?
2: नहीं, ऐसा कोई ना तो मैंने जानने की कोशिश की और ना ही उन्होंने कुछ ऐसा बताया।
1: चलिए, इसके बाद क्या हुआ?
2: इसके बाद ये हुआ कि मुझे घर पर भेज दिया गया और जैसा कि मैं ठीक हो गया था मेरी नज़रों में और मेरे माता पिता की नज़रों में एकदम ठीक था, डॉक्टर्स को भी पता था ठीक है अभी, तो घर पे रह रहा था। 25 से 26 दिन हुए मुझे घर पे रहते हुए और मेरे पास एक शाम के समय 17 फरवरी 2018 को शाम 7 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया और वो डिपार्टमेंट से राजीव माथुर जी का
1: जी,
2: जो कि वहाँ पर एक समाज सेवी हम MSSO हैं
1: जी, मेडिकल सोशल वर्कर हैं इसके हेड है।
2: तो उन्होंने बोला कि राहुल तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट होना है क्या? मैंने कहा यस सर, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट होना है। तो उन्होंने बोला तो फिर कितनी देर में आप एम्स आ जाएंगे? तो मैंने कहा सर मैं तो अभी आ जाऊंगा 2 घंटे में, मुझे तो पता नहीं था ना कितना समय लगेगा। तो उन्होंने कहा 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, घर पे आपके साथ आएगा कौन? मैंने बोला कि मेरे फादर मेरे साथ आएंगे और सारी डिटेल्स उन्होंने पूछी कि गाड़ी से आएंगे, बाइक से आएंगे, कैसे आएंगे। उसके अनुसार उन्होंने उन्हें टाइम के बारे में बोला कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में आप आ जाइए। मेरे पापा को उन्होंने ये बताया कि आप 1 घंटे में ला सकते हैं तो आ जाइए, वरना नहीं कराना चाहते हैं तो फिर एक बच्चा और है जो रजिस्ट्रेशन की लाइन में है,
1: वेटिंग में है
2: जी। तो मेरे फादर ने बोला कि हम 1 घंटे से पहले पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो बाइक का एक साधन मेरे पापा ने अच्छा चूज किया जिससे कि
1: ट्रैफिक से बचा जा सके
2: और हमें परमिशन भी मिल चुकी थी एम्स से कि अगर कोई पुलिस वगैरह कोई रोकता है तो हमारी बात कराई जाए, तो वो बिना कुछ कहे आपको छोड़ देंगे।
1: सो मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को हाईलाइट करना चाहूँगा कि देखिए, आपने मतलब जैसा राहुल ने बताया कि बाइक पर ही अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए एम्स गए।
2: जी जी, तो
1: कितनी अनोखी बात है कि कुछ दिन पहले तक जो बेड पर जिनकी पल्स 18 चल रही थी, जो बिल्कुल अपने आप को ख़त्म समझ चुके थे, आज बाइक पर अपना नए हार्ट लगवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे
2: जी।
1: और पूरी तरह से उस टाइम पर वो पूरी तरह से स्वस्थ थे,
2: जैसा कि हर किसी बच्चे के माता पिता उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरे दिमाग में उस समय यही फीलिंग चल रही थी कि मेरे पापा एक मुझे गिफ्ट दिलवाने के लिए ले जा रहे हैं बाइक पर बिठा के।
1: जी बिल्कुल। राहुल, हम यहाँ पर एक छोटा सा अंतराल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: दोस्तों हम वापस आ गए हैं इस छोटे से अंतराल के बाद। हम बात कर रहे हैं राहुल प्रजापति से जो कि हार्ट ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं। राहुल आपने ब्रेक में जाने से पहले बताया कि किस तरह से आप बाइक पर हॉस्पिटल गए और आपको कॉल आया, तो फाइनली आप कितनी देर में पहुंच गए हॉस्पिटल और उसके बाद की जर्नी?
2: जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा मुझे एक उपहार दिलाने के लिए जैसे लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ, उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा, उन्होंने पूरी कोशिश की, किसी रेड लाइट पर हमने बाइक नहीं रोकी और ना ही इतना लकी दिन था कि किसी पुलिस वाले ने हमें आके रोका। तो फिर हम 40 मिनट में एम्स पहुंच चुके थे अपने घर से।
1: उसके बाद फिर एडमिट होना, आपके सारे चेकअप्स भी किए हुए हैं।
2: जी जी, तो मुझे नहीं पता था कि ये हार्ट ट्रांसप्लांट इतना बड़ा प्रोसीजर है कि एम्स में हमसे ये भी नहीं पूछा जाएगा आप हैं कौन, जहाँ पे एक आम आदमी भी किसी डिपार्टमेंट में घुसने से पहले गार्ड पूछता है कि आपको जाना कहाँ है।
1: जी,
2: उनको ये पहले बता दिया गया था कि एक बच्चा आ रहा है राहुल नाम का और वो बाइक से आ रहा है अपने फादर के साथ। तो सारे बैरिकेड उन्होंने तोड़ चुके थे, मतलब हटा चुके थे। सिर्फ उन्होंने एक बार लास्ट में जो बैरिकेड था उसमें पूछा राहुल हो क्या आप, बस फिर वो हम सीधा गए और एक संतोषी मैडम है नर्सिंग स्टाफ में, उन्होंने जाते ही वो मेरा, उनकी डबल ड्यूटी लगाई गई मेरी वजह से।
1: जी
2: हाँ, जबकि हमारा दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम ही है।
1: जी,
2: तो ये सब भगवान का लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या। अभी वो मुझे इतना, हमारा इतना ज़्यादा कनेक्शन हो गया है कि एक ब्रदर सिस्टर की तरह, तो वो थी वहाँ पर और मेरा सारे टेस्ट उनके अंडर में हुए और वो फिर मुझे एडमिट कराने के बाद अपने घर चली गई।
1: सो राहुल, तब की लाइफ में और अब की लाइफ में आपको क्या अंतर देखने मिलता है अपने अंदर? कई लोग पूछते हैं कि जैसे दूसरे का दिल लगा है।

0: तो हमारा मन चेंज हो जाएगा क्या?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं। बाकी मेरी मदर फादर और दादी के मन में और जो कुछ लोग फ्रेंड्स हैं ऐसे, तो उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे कि तुझे कुछ अजीब सा तो नहीं लगता, कि छाती में दर्द तो नहीं होता, और ये भी सोचते थे कि कभी इसकी लाइफ तो कुछ ही दिनों की है, ट्रांसप्लांट तो इसका हो गया है पर लेकिन ये कैसे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब जानकारी पूरी नहीं होने के कारण उनको ऐसा लगता था कि ऑपरेशन तो हो गया है, और हालांकि दिल बदला गया पूरा, तो एक दो साल तीन चार साल ये जिएगा और फिर उसके बाद वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आज भी किसी को इस बारे में पूरी नॉलेज नहीं है कि हमारे ही घर के पास, हमारे घर से कुछ किलोमीटर दूर ऐसे ऐसे अस्पताल बन चुके हैं, उसमें इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में जाने माने डॉक्टर्स हैं, और जाते ही आपको सिर्फ उनके पास एक रजिस्ट्रेशन कराना है और सिर्फ वेट करना है ऑर्गन का, ऑर्गन आएगा और आप ठीक हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी पुरानी जिंदगी आपको वापस मिल जाएगी।
0: कई लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं बहुत सारी, अब वो देखते हैं आपको
1: जी।
0: आपकी दादी
1: जी
0: वो भी देखती होंगी आपको, क्या विचार है उनके, कितने विचार चेंज हुए?
1: दादी के विचार है इस पर इस तरीके से हैं कि दादी जब भी देखते हैं खुश तो पूरी हो जाती हैं, पर जब मेरी दादी ये बोलती हैं आजा गरम गरम खाना बन रहा है, और गांव का जो समय है वो वही समय है जो हमारा ब्रेकफास्ट का समय होता है, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे मुझे दवाई लेनी होती है और कम से कम एक घंटे के गैप देना पड़ता है, 45 मिनट या एक घंटे का
0: जी।
1: तो वो हमेशा ये नोट करती है कि ये जब भी मैं बोलती हूँ कह देता है कि आधे घंटे बाद खाऊंगा। उनको शुरुआत में तो उनको पता नहीं था ये ऐसा क्यों बोलता मुझे, फिर मैंने उनको जब उन्होंने एक बार मुझसे पूछ लिया तो मैंने बोला कि दादी मैं उस समय अपनी दवाई लेके थोड़ा गैप देता हूँ।
0: और वो शरीर का नाश हो जाना, उसके बारे में उनके क्या थॉट्स हैं?
1: दादी ने जब मैं ठीक हो गया तो दादी तो इतनी रोने लगी कि एकदम से ठीक हो गया है, और डोनर फैमिली के लिए उनके मन में ऐसे ऐसे शब्द थे कहने के लिए जो कि बहुत भावुक करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे का बच्चा चला गया और हमारा बच्चा हमारे पास वापस आ गया है, तो उनके भगवान में उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उनका जो शुक्रिया है वो मैं कैसे अदा करूँगी, उनसे मैं मिलना चाहती हूँ, सब कुछ उनके क्वेश्चन थे हमसे थे, वो तो डॉक्टर से तो वो नहीं मिली थी
0: जी,
1: तो ऐसा सब कुछ था। और दादी तो एक ही अब इच्छा है कि मेरी दवाइयाँ कब खत्म होंगी।
0: अब ओवरऑल आप बिल्कुल ठीक है?
1: यस, मैं पूरा एकदम स्वस्थ व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।
0: कभी कोई कमी महसूस होती हो क्योंकि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है? जब लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं आपको लगता हो कि शायद मैं नहीं कर पाऊँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: जैसा कि ट्रांसप्लांट होने से पहले ऐसी कुछ बातें थी या ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाता था, जब से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है हार्ट ट्रांसप्लांट, उसके बाद पॉजिटिवनेस इतनी बढ़ गई है माइंड में, या तो ट्रांसप्लांट जिसका हार्ट मुझे लगा है उसकी थिंकिंग ऐसी रही होगी कि वो किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेता होगा अपनी लाइफ में, तो मेरा भी अब ऐसा ऑटोमेटिकली माइंड में ऐसा आता है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, सभी काम मैं कर सकता हूँ, भाग भी सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ, किसी भी तरीके का खेल खेल सकता हूँ।
0: आप स्पोर्ट्स में भी हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं
1: जी,
0: किन किन गेम्स में आप हिस्सा ले रहे हैं?
1: मैं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में बैडमिंटन में और फुटबॉल में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देखता हूँ कि कितना आगे मैं जा सकता हूँ, अगर मैं कोई इंजरी बिना इंजरी के अगर मैं,
0: तो आपको दौड़ने भागने में कोई दिक्कत नहीं?
1: दौड़ने भागने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं, कोई सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है,
0: बिल्कुल पूरी तरह से
1: हाँ जी
0: नॉर्मल,
1: एक नॉर्मल पर्सन की तरह मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ।
0: दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स ओलंपिक गेम्स की तरह ही ये गेम्स हैं जो जिनमें सिर्फ ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स या जिन्होंने अपना कोई अंगदान किया है जिंदा रहते हुए वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि अंगदान कोई अपंगता नहीं लाता। अगर आपने कोई अंगदान किया है तो आप अपंग नहीं हो जाएंगे अगर आपने किडनी या लिवर का हिस्सा डोनेट किया है, और या फिर आपको कोई अंग मिला है किडनी लिवर हार्ट इंटेस्टाइन या किसी भी तरह का, तो आप कोई अपंग नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, आप वो सब काम कर सकते हैं जो एक नॉन ट्रांसप्लांट पर्सन कर सकता है। आप पेशेंट थे, अब आप पेशेंट नहीं है, आपका नया पुर्जा आपके अंदर लग चुका है और आप बिल्कुल थोड़ी देर से स्वस्थ हैं, बस आपके जो कटिंग मार्क्स हैं और उन अंगों को चलाने के लिए थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स का पूरे विश्व स्तर पर आयोजन किया जाता है और हर 2 साल में ये गेम्स आयोजित होते हैं और इस बार ये ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में 2023 में होने वाले हैं। तो इंडिया की तरफ से ऑर्गन इंडिया इंडियन टीम की मैनेजर है और हम लोग करीब 50 एथलीट्स को अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट करवाने के लिए यहाँ से लेके जा रहे हैं, जिसमें राहुल भी एक पार्टिसिपेंट है और राहुल 2 गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मन बना चुके हैं जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं हमारे श्रोताओं और ऑर्गन इंडिया के परिवार से, राहुल हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में जाएं और इंडिया के नाम रोशन करके मेडल जीत कर लाएं।
1: जी, तो मैं ये कहना मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑर्गन इंडिया का, मानव रचना यूनिवर्सिटी का।
0: तो जी बिल्कुल, राहुल एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में कई भ्रांतियाँ हैं अंगदान को लेकर, कई रूढ़िवादिता सोच जो है हमारे समाज में फैली हुई है अंगदान को लेकर, आपने इस सब चीज़ों को बहुत करीब से देखा है और आपकी जान बेसिकली किसी के अंगदान करने से ही बची है।
1: जी जी,
0: और जैसा कि मैं भी देख सकता हूँ और आप भी महसूस करते हैं कि आप टोटली एक न्यू लाइफ जी रहे हैं मौत के मुँह से निकल के।
1: yes,
0: तो ऐसे लोगों को जो अंगदान को अच्छा नहीं मानते या उसको सपोर्ट नहीं करते या उसके उससे हिचकते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जो लोग अंगदान करने से हिचकते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अंगदान नहीं करेंगे, अपने ही घर के व्यक्ति जो कि किसी ऐसे कारण से इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, जो बिना किसी समय के उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे आदमी का जो अंगदान है वो हमेशा करना चाहिए और अंगदान में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अंगदान से एक अपने ही बच्चे का आप किसी को अंग अगर देंगे तो दूसरे व्यक्ति में वो, जैसा कि मेरे अंदर हार्ट किसी दूसरे व्यक्ति का चल रहा है, तो डोनर फैमिली को इस चीज़ का भरोसा है कि हमारा बच्चा अभी भी राहुल के अंदर जिंदा है।
0: बिल्कुल,
1: जो भी डोनर्स फैमिली होती है उनसे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये डिसीजन सही समय पर लिया और मेरी भी जान बच पाई। तो आम आदमियों को भी मेरा यही संदेश रहेगा कि अगर किसी के घर में, पहली बात तो किसी के घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान का ये सब किया हुआ है कि कभी भी किसी के साथ कुछ होता है अगर, तो अंगदान में किसी भी प्रकार का संकोच ना करें और दिल खोल के अंगदान करें।
0: बिल्कुल जी, धन्यवाद राहुल जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और हमारे लिए समय निकाला। तो दोस्तों ये थे राहुल और हमने इनकी कहानी सुनी कि कितनी सेंसिटिव, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी परेशानियां झेलकर और आज एक बिल्कुल हेल्दी लाइफ सिर्फ इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि किसी ने अंगदान किया, किसी ने अपना दिल इनको डोनेट किया। और सिर्फ दिल ही नहीं, आई एम श्योर कि उनके अदर ऑर्गन्स, किडनी, लीवर, वो भी डोनेट हुए होंगे और बहुत सारे राहुल की तरह ही बहुत सारे लोग होंगे जिनको उस डोनर फैमिली के एक हाँ कहने से दोबारा ज़िंदगी मिली।
1: जी बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो मैं भी आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप अंगदान बारे में जानें, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करें और फिर अपना मन बनाएं कि आपको ये करना है या नहीं करना। बिना जाने इसको हाँ भी ना कहें, इसको ना भी ना कहें।
1: जी,
0: एंड अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं अंगदान के ऊपर तो आप www.organindia.org को विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं जल्दी ही हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर और कुछ नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहु ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल

और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117091710179। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, पर फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहाँ, तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर,
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ी। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया।

0: वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
1: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे दो दिन में वापस चाहिए।
0: दो दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
1: श्योर
0: श्योर सर।
2: हेलो बेबी चाय।
3: थैंक यू।
2: आपने आज की न्यूज सुनी?
3: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
2: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
4: ओह नो।
3: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है?
2: पता,
3: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
2: और क्या।
5: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

सत्यो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तो मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तो मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तो आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोते हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम इंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला तो सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा।
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार ना पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर,
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ी। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, और मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

ए तो हाँ सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला किनिशोतो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया किनिश सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

यह तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तुहां सारी कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इयां बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ए तो हाँ सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कनिष्ठ सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तोहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तोहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे इं बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पन दी।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701817018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो पोषण।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहाँ, तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर,
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ी। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
15: ओह नो। अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है,
14: पता
15: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
16: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701-8170-1811-1701-9171। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहाँ, तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर,
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ी। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है,
14: पता
15: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

0: नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला दो है सभी ट्यून कर रहा और हम सचिन कपूर हाजिर बुझगो तुंद अपना कार्यक्रम लेकर इंदी अपनी गप्पा। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हाँ सभी होने आ रहा, सभी श्रोतागण रहा, क्या हाल चाल न तुंदे? उम्मीद कर लो तुंदे हाल चाल ठीक बुने, तो सब खरे बुढ़े और अपने घर खुश और तंदुरुस्त बुने हिन श्रोताओं। इस कार्यक्रम मंच तो सब श्रोता के ना आश्वास हो कि जरूर जुड़े सकते हैं ना, अपना पसंदीदा गीत की ऐसा हो नहीं सकते ना, और अपने क्षेत्र जानकारी है वो कि साझा कर सकते हैं, बशर्ते है अगर लारा खास ख्याल रहे, खास ध्यान रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर भुआ, जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक जरूर भुआ। कस नंबर मंच तो जुड़े सकते ना बिल्कुल इस लाइव कार्यक्रम में, तुंदे जो पसंदीदा गीत भुने ना सो बिल्कुल लाइव चल रहे हैं। इंशाल्लाह 7081889 पर नंबर आक मुके फिर हूँ रिपीट कर लूँ, 7081889 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं। बहरहाल इंदे श्रोतागण ना सो कनेक्टेड हैं, जिन तक श्रोता कनेक्ट होंगे तिन तक रहा है तुसो धर्मशाला रा मौसम भी दस इंदन। इस समय धर्मशाला रा मौसम की है सोखी है बलदा क्या डोल है मौसम आ रही फिलहाल डोलते है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी किया सुबह चुगर दी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रा एहसास किया सुबह चुगर दा हा शोतों। तो इस समय लगभग किया शोतों सो जो सो दसू करता हा इस समय नेट सो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रे आसपास आ इस समय मौसम। और नमी की गल करूँ जतियो अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी बोल देना ता सो इस समय हाशतों 3%। तो चलिए जी कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंच अब थोड़ा करो और हगो बढ़ते हैं और अय्या लेकर चलते तू सब भी जो इंदे श्रोतारी किनारी। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: और ठीक ठाक सर जी?
0: बहुत बढ़िया जी। तो वाला तो ठीक ठाक?
1: हाँ जी सर जी।
0: अच्छा ये दसा कि धूप कदे है तुंदे किनारी?
1: धूपा तो पूछा मत सर जी, गर्मी प्रचंड गर्मी चली उस टाइम। हाँ जी सर जी,
0: प्रचंड गर्मी, क्या बात।
1: हाँ जी, हाँ जी सर जी,
0: ठीक बोलो।
1: गर्मी तो निकल ही नहीं होता सर जी, मतलब 10 बजे के बाद था
0: ना जी।
1: हाँ जी, भी आगे 10 बजे के बाद 3-4 बजे।
0: 10 से 4।
1: हाँ जी
0: भाई, मैक्सिमम लोग मनु कहन सो संझ रहे घूमना घामना की सो गंदे जे 5-6-7 बजे बाद है ना।
1: हाँ जी सर जी,
0: धूप इतनी ज्यादा, इतनी
1: तीखी धूप ज्यादा सर जी।
0: जी कुंदी ने गीत हुन्ना पसंद कर ले तो है
1: गाना सुनाई ने मिन जो मोहित गर्ग दी आवाज है, गाना है कांगड़े दी बरात।
0: मोहित गर्ग?
1: हाँ जी, कांगड़े दी बरात।
0: चलो ठीक है जी।
1: हाँ जी धन्यवाद सर जी,
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी। कांगड़े दी बरात की तारी फरमाइश जरूर हूँ ले श्रोतों। तो सब श्रोता भी अगर जुड़ रहे हैं तो कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते। ये थी श्रोतों इस हबजूरी की सो है तुसो अपडेट दिते हैं मौसम तो रिगार्डिंग मौसम तो रिलेटेड है ना। तो चलिए श्रोताओं तो सब श्रोता कॉल में दसीता कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत में बलिता तो हो ही सकते हैं। बहुत सारी खास जानकारी जो रोज़ाना है तुसु तक पहुँचा दें सो जानकारी के ना सो तुसु तक असु जरूर पहुँचानी हैं। बहरहाल लेकर चलते तू सभी जो इस गीत तारी किनारी है

0: শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধারামশালা তো এসা বি টিউন কর রো আর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপা গেন সো চল রিন্দন দেসা বি রেডিও সেট মা তাই এ শত কার্যক্রম জ হগো বড়ন দেন আর কুছ এক জানকারি হগি তো সো রুবরু করবন দেন লেকিন ইন দে শত গন কেন সো সো গে আ কানেক্টেড ইন পুস্তেন কোন বলুন দেন আর কড়ি থম বলুন দেন নমস্তে জি
1: হ্যালো
0: হ্যালো নমস্কার জি
1: নমস্কার জি ওর কি হাল
0: बहुत बढ़िया जी कौन बोल लूं देन और कड़ी थों बोल लूं देन
1: ऐ बोल रहे धर्मशाला हूँ
0: धर्मशाला कहाँ जगह थों जी
1: ए नहीं नहीं बिजार
0: कुतवाली कचहरी
1: कुतवाली
0: थों अच्छा क्या कर देन जी तो है
1: तस खट्टी काम कर दे सारे
0: कटेरा काम जी
1: खट्टी रख
0: अच्छा
1: अच्छा
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और कदे को आज कल दिन तुंदा
1: बड़ा बढ़िया दिन को जी आज
0: अच्छा क्या बढ़िया बुआ दिन मा
1: खराब जी वो सब कुछ
0: अच्छा ठीक बुआ ना चलिए ठीक है जी कुछ दिन गीत होना पसंद कर ले तो है कार्यक्रम मंच
1: कोई माता री भेंट होना ही कोई खरीद
0: माता री भेंट चलिए ठीक है जी जरूर हूँ और ले है ना जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद जी तई शो तो इसी सौ गीतु सो लेके चल दे हागो और अगली जानकारी होगी तू रूबरू कर देन शो तो धार्मिक नगरी कांगड़ा जो धार्मिक नगरी बन देन शो तो कांगड़ा में किया सो बैगा बैगा चेन स्क्रैचिंग रहा मामला गया सो सामने आ शो तो और जस यू लेकर सनसनी खेच किया सो पै गया जे बिल्कुल शो तो थोड़ा करे बेखौफ वाले थी है जो मनु हिन अब इन जाने हिमाचल रहती है या फिर बाहर रहती है क्योंकि वह सब भली भांति जान देन और बाखूबी जान देने है गल्ला था कि हिमाचल में गया सो अदर स्टेट रहे बहुत सारे मनु के सो वेंदे हिन तई कम शोतों दो ही बाइक सवार थी है दो ही लुटेरे थी है जिन्हें बैगा बैगा मंदिर चल रहा कि महिला जो कि आसो निशाना बनाई करे सारे गले थों सोने भी चेन के आसो खिंची ले शोतो यानी कि छीन ले है ना और मौके थों फरार बुझ गए शोतो घटना थों बात शोतो पूरे क्षेत्र में दहशत रहा थोड़ा करे माहौल के ऐसो बनो कजो कि ये कदी बुंदा ने और कांगड़ा रोड में मतलब मंदिर रोड में खासकर ब्रजेश्वरी माँ दरबार में ऐसा कदी बुआ ने शोतो ये पहली घटना मुझे लगता है ता थोड़ा करी दहशत रहा माहौल के सो बनो शो तो पुलिस जो किया सो जानकारी मोड़े मामला दर्ज हुआ और जानकारी मोल दे पुलिस किया सो जांच में बड़ी तेजियों के सो जुटे गए शो तो मिली जानकारी रे अनुसार दसु कर दिन की महिला के सो

के सो झपटी ले सो खिंची ले त्राय तोले सो नेरी चेन छो तो। वारदात जो अंजाम देने थो बाद अखी वक पहले थो बाइक बिखुरो थो और फिर फटाफट दुआ बे किया सो बही गो और फिर दोनों आरोपी बाइक पर गया सो सवार बुझ गया बड़ी तेजी थो किया सो फरार बुझ गो बुच गया दोनों। घटना तो बाद जो घटना हुई था थो बाद महिला घबरो रही थी और अब घबरो रही अवस्था में आस पास रहे मनु थो मदद सो मंगो कर दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस भेज के ऐसो मौके पर पहुंच गए सो तो और जांच शुरू हो गई। पुलिस से कि ऐसो आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे भी फुटेज खंगाले और खंगालने के ऐसो शुरू कर ही देते सो तो ताकि आरोपी की पहचान के ऐसो जल्द तो जल्द बुझेगा। अच्छा बहरहाल अब वाकई में इन धर्मशाला कांगड़ा में कि ऐसो इस तरीके का मामला ना कि भाई सोने भी माला जो किया चैन जो किया सो इस तरीके हो गई कोई दो युवक के न सो चुराना चाहते थे है ना। लेकिन कुछ भी हो सकता है बदलती जिंदगी और बदलते अपने भी न तो कुछ भी किए सो हो सकता। बहरहाल माँ तारी भेंट बल्लो तो जरूर है हुण ले कांगड़े की बरात मोहित गरगरी आवाज में फिलहाल इस गीता जो कि शो तो सो हुणे लेंदे न और इतों बाद अगली जानकारी के ना सो तुस हो गया है जरूर शेयर कर ले साझा कर ले बने रहे तो ये सब आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे हो गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे।

चलिए जी, इन तो बहुत पहले पहले श्रोता थी है, आज यारे फरमाइश थी जो है पूरी करे श्रोतों। तो सब बन रहे हैं इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव चल रहे हैं श्रोतों का। तो सब श्रोता जरूर बढ़ सकते हैं 7018889 पर नंबर आख मौके फिर आऊँ शेयर करना तो वो कि साझा करना और 7018889 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल कर कर अपना पसंदीदा गीत के सो होने सकते हैं श्रोतों। तो चलिया है जल्दन आगू और श्रोतों अगली जानकारी तो हो गया है शेयर कर दें कि कांगड़ा में आके ऐसो दिन दिहाड़े जो मामला बुआ चेन खींचने वैसे तो ये पुलिस वास्ते की ऐसो बड़ी चुनौती भी है करकनगर का क्योंकि ठाणा कांगड़े थो 100 मीटर दूरी पर एक ही वारदात बचू रही थी जहे सनसनी खेच के सो मचे के चोरे या श्रोता हूँ बिना नंबर प्लेट बाइक पर सवार थी है दोनों लुटेरे हड़कंप जरूर आ बिना नंबर प्लेट गाड़ी जो कि मतलब आप बिना नंबर प्लेट रे गड्डी कर कहू जी तीन जब्त होना हा प्रदेश पथ परिवहन निगम रे उप अध्यक्ष अजय वर्मा वे बलना हा कि पुलिस जो आदेश देते हैं कि बिना नंबर प्लेट रे वाहन जो किया सो जब्त तो है कर लिया ठीक है। इसो की श्रोताओं कांगड़ा में इलेक्ट्रिकल दुकान में के स्वाग भड़के है और अस्पताल रे सामने आग भी लपटा किया तो यहाँ कहर मचाओ 2 लाख रे नुकसान किया सदस्य करते हैं श्रोताओं। इस होगी श्रोताओं देरा माँ का जो गिंदे जो पहले श्रोता थी देर अथों थी तो देरा जी जानकारी दिंदे जी देव अंदर की सो बलैरो पलटी चोर युवक किया सो बाल बाल बचे श्रोताओं। टंडा मेडिकल कॉलेज में किया सो 28 मई जो किया सो बंद रहने OPD जी बिल्कुल कोई रहने बंद तेरा कारण भी है तो सो किया सो जरूर दस दिन की बंद कथी हो रहने है ना क्या कारण है कि OPD बंद रहने है। डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद वाजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में 28 मई जो टांडा पंचायत इलेक्शन रहे चलते कि सो OPD पूरी तरीके हो गई सो बंद रहने हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज वे प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ये जानकारी दिती और दसो आ कि टांडा पंचायत इलेक्शन 28 तारीख जो कि सो भूना निर्धारित हिन जटेरे चलते अस्पताल में OPD बंद रहने हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहनी हैं हिमाचल प्रदेश सरकार रे निर्देशानुसार जी बिल्कुल ये हिमाचल प्रदेश सरकार रे निर्देश ने और त्यारे निर्देश अनुसार प्रदेश में पंचायतीवाद संस्था वे आम चुनाव रे उपलक्ष्य में 26 मई प्रथम चरण 28 मई द्वितीय चरण और 3 मई तृतीय चरण जो कि सो हिमाचल प्रदेश राज्य में किया अवकाश घोषित करो हा और बिल्कुल जड़ी जड़ी चुनाव बुने इलेक्शन बुने तड़ तड़ी किया सो छुट्टे रहने हैं श्रोताओं। चाहे सो फिर औद्योगिक विवाद अधिनियम रे अंतर्गत इने वाले संस्थान सहित प्रदेश में स्थित सभी सरकारी कार्यालय बोर्ड निगम शिक्षा विभाग रहे है ना शैक्षणिक संस्थान जतीय बन देना है और औद्योगिक प्रतिष्ठान और बिल्कुल ये सब की ऐसो बंद रहने तो चलिए फिलहाल तो ये सब श्रोता सू की जरूर बढ़ी सकते हैं श्रोताओं कार्यक्रम जो आगे बढ़ दे और लेके चलते तू सब भी जो इस प्यारे दे मातरी भेंट बल्लो तो हम

0: शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रो और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर देना। अन्य जानकारी तुस हो गया सो जरूर शेयर करनी इन शोतों साझा करनी लेकिन इन दौतगन अस होगी कनेक्टेड हैं पुस्तन कौन बल्लों देन और कड़ी थो बल्लों देन। नमस्ते जी
1: सचिन जी। नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: दाड़नू बल्लों दा राजू।
0: अच्छा दाड़नू थो राजू जी क्या हाल चाल ठीक ठाक ना।
1: बढ़िया बढ़िया जी।
0: और गाय बकरू है कणका कुण का
1: ओ बेल दे दोए दोए दाई हो कहने लग रही है।
0: अच्छा दोए दाई करे या बे पेड़ू में बाई लेनी सीधा तो सुआ ना।
1: आ पेड़ू बाई लेनी।
0: चलिए जी और दाड़नू वाले सब ठीक ना।
1: बढ़िया सब ठीक है।
0: अच्छा करे करे लुगरे
1: बस करा लगना धूप बढ़िया लाई छाए छाए भी हो रहा कणक लग रहा छेड़ा दीना।
0: अच्छा चलिए धूप खरे हुए कणक तो खरे है ना कणक खरे होके गाने। हाँ
1: जी हाँ जी
0: हाँ जी कुन्ने जी जी
1: रुल्ला दी कुल्ला
0: रुल्ला दी कुल्ला हो ना। अच्छा चलिए ठीक है राजू जी जरूर होने लेते सुई की तय।
1: ठीक ठीक धन्यवाद
0: धन्यवाद जी। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब भी ट्यून कर रो और इसी सो की और श्रोता कनेक्ट बच्चू कर दे थी है तिया जरूर अगर दुआली कॉल इंदे तो कनेक्ट कर ले रुला दिया वुला दिया कुल्ला है ना ये गीत श्रोतो महजक गीत ने आ ये गीत अंदर बहुत कुछ बया बुंदा हा बहुत चीज़ा के ना सो इस गीता अंदर दर्शन दहिन बरहाल एक प्यारी दी स्टोरी जो लेके रहा है हमेशा हाजिर बुंदे हिन तुंदे वीडियो सेट मा सो प्यारी दी स्टोरी की असो तुसु असु जरूर होना नहीं हा लेकिन तथो पहले हम सोचूंगा कि फरमाइश जो कि सो पूरी कर ही लेंदे इन शो तो आइया ये फरमाइश जो कर देन पूरी और तुसु हुन देन इस गीता तो बाद एक प्यारी दे स्टोरी बनी रही है तो सब एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो

0: Can someone?
1: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून को रॉर कार्यक्रम लेकर आया हूँ सचिन कपूर हाजिर भी छूरा हिंदी अपनी गप्पा तो चलिए जी बहुत प्यारी दे स्टोरी किया सो तुसु तक सू पहुँचाने हैं बड़ी प्यारी दे स्टोरी आई है श्रोताओं हूँ दिन यह स्टोरी जो

0: करे या सारी उम्र की असो इतनी मेहनत सो की कमावा इतनी मेहनत करे या तो अज अगर अब रिटायर बुच्चू करता था अगर खा घर के असो बड़ी जगह लेंदा और बड़ी प्रॉपर्टी है रही थी ने मतलब तीनों आग जगह अच्छा लगो कि तड़ी आम रा पेड़ लग रहा थो तह तस घर तस घरा पचू आम रा पेड़ तो ना और आम के थी सो सेरी यारी धर्म पत्नी जो के थी सो बड़े पसंद थी और इन्हें क्या करो कि सो घर एट लास्ट फाइनल करी था कि घर के मोह लेना ठीक है इतड़ी रहने रूने लगी पे रहने रूने तो बाद जो आस पड़ोस तो थोड़े करे तिन्हों की यारी मित्रता बुझ गई अच्छी मित्रता हुई और इन्हें बोलो कि तो है घर तो ले लो लेकिन तो है वास्तु योग के असो भी है ना तो तू है ना कोई खरेना एस्ट्रोलॉजर हद्दी करे किया यानी खरेना ब्राह्मण हद्दी करे किया सो दस ही लेना तू घर है ना कहले तो जहन में चलिया यार भी ये जो सज्जन थी जो गवर्नमेंट सेक्टर थो रिटायर थी आराम री जिंदगी की आसो व्यतीत करना चाहते थी दस घर जहन में ख्याल चलिया मन में शक बच गो तेरा जिंदगी में ना सभी चीज़ें रह गया आसो इलाज हो सकता लेकिन शक रहा कोई इलाज ना हो सकता शक क्या सो इंसान री फितरत में बंदा कि सो सभी री फितरत में बंदा लगभग मुझे ही लगता कि असु बुझेगन दा शक है ना इंटीमेशन बुझेगन दिया हाँ इन बुझ गई और सज्जन क्या है सो दिल्ली चले गया भाई बल्लू बहुत मन रो तुम रहा ब्राह्मण थो गद्दी बल्लू ना एस्ट्रोलॉजर अंग्रेजी बल देना बड़ा मन रो तुम रहा और सिरी सब गल के अंसो सच बुंदे ता है इन भी अपनी गड्डी चुकी और ये भी दिल्ली के ना सो पुज गया तिन्हों ले कर वापस किया सो अपने घरों लेकर लगुरी थी ना रास्ते में जो सोतो इन्यो जो भी ओवरटेक करो करता थू ये जो सज्जन थी जयपुर वाले जो भी इन हॉर्न मारो करता थू ओवरटेक करो करता थू ये सब भी साइड की ऐसा देख चु करते थे है ना सब भी वो साइड दिन दे रहे जो भी हॉर्न मारा तो जो सोगी बेखुरी थी ब्राह्मण ये पूछ लो कि तो है तो सब भी साइड दे चुकर दे कसी कुछ ना बल्लू कर दे एक बोला अगर कोई पिछला बंदा किया सो अगर मुंजो हॉर्न मारू करता तो सो शायद मुंजो तो ज़्यादा जल्दी में या शायद कस की एमरजेंसी में ताई सो हॉर्न मारू करता मतलब आऊँ ये अंडरस्टैंड करता थोड़ी करी और आगू पूछे पूछे तो तड़ी अक बुजुर्ग क्या थी है सो रोड क्रॉस लग रही थी अगर अपने इलाके है पुजे ये ब्रेक मारे और तिया बुजुर्ग जो किया सो रोड क्रॉस करना दिता थोड़ी करी और आगू पुजे था बच्चा किया सो रोड क्रॉस करो करते थे सामने पार्क तो सामने सड़क थे बच्चा एकदम किया सो रोड क्रॉस करो करते थे बच्चा एकदम चलिया आख बच्चा के निकलो था इन्हें ब्रेक मारी थी और थोड़ी देर इं एर और एरू इन पता तू कि मतलब बच्चा को रही सकता और आ भी तो जो ये इंदे एस्ट्रोलॉजर बिखरी थी ब्राह्मण इन्हें बोलो कि तू सुखी पता तू कि दूगा बच्चा बीना बोलो कि यार बचपन में जो याद चलिया बचपना है जैन भी पकड़ पकड़ाई खेल देती है तो खाली या केले थोड़ा ना खेल देती है कोई ना कोई साथी बुंदा ही तो सूगी कोई ना कोई भाई थे बुंदा ही तो है ना बोलो हाँ जी बिल्कुल ठीक बोलू दे फिर ये एट लास्ट घरे पुज गए गेट खोलो और जिया गेट खोलो तो तीन सी ना बच्चे री थोड़ी बहुत शोर री आवाज़ आई जो कि आम रे पेड़ में चढ़ रही थी है और इन्हें फिर तस ब्राह्मणों बोलो कि एक मिनट गड्डी अंदर रहा है बैठे रहते हैं गड्डी बंद करी देन हगू ना लेकर गए देखो जो कि पुछो बच्चे के ना सो आम खाओ कर देन और तिया इरना कि घर आरा मालक चलिया तो जल्दबाजी कर कागज क्यों लगे गए तले हल्के बच्चे जिंदगी पूरी प्योरी आ रही है ना कख लगे लोग गए तो और मतलब यारे बच्चे भी जिंदगी की ऐसा खराब होना है ये जो ब्राह्मण बिक रही थी सो गए ये यार एक गल्ला होने करी पूरी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ है काफ़ी ज़्यादा किया सो खुश भी हुआ है हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ है। और इन्हें फिर एट लास्ट बली था कि तुस वो मेरी जरूरत नहीं आ, आऊँ चलनो। एक घबराएगो बंदा जयपुर वाला जो रिटायर्ड थो, बोलो जनाब मुझो कोई गलती हुए तो मुझे माफ़ करा, मुझो तुम्हारी खातिरदारी कोई गलती हुए मतलब तो माफ़ करे, या मैं कुछ बली था तो मुझे माफ़ करा। भला ब्राह्मण बोलू ना जी ना तुसू कोई गलती ना बोई, लेकिन तुम्हें करे वास्तु योग के हरना, मतलब जो इंसान अपने थो पहले हर त्रिये पर्सन री खुशी की असो हेरू करता, अपने थो पहले इतने अंडरस्टैंड करू करता चीज़ा कसकी त्रिये वास्ते जिस ये तो है जानते भी नहीं ना, सेरे करे था मतलब कोई वास्तु योग ना बुझ सकता। सिरे कर रहे था मतलब जो इंसान इतना अंडरस्टूड करू करता, जो मोटा कर रहे इतना अंडरस्टैंड करू करता चीज़ा, जो बार आ रहे बंदे हो तो सो अपने कर रहे बंदे हो कितना अंडरस्टैंड करता ला, कितना सपोर्ट करता ला, तो तुम्हें कर रहे था मतलब ही ना बनता। ये बल्ले करे ब्राह्मण बोलो कि हम चलना बोलो तू नहीं दूर आए था थोड़े रोटी पानी चाह तो कर गया, चाह रोटी पानी चाह कर ली थी। तो शो तो ये छोटी जी स्टोरी अस वो क्या सिखाई करी गंदे या क्या अस वो दसी करी गंदे, ये जड़ तक कराऊँ यह स्टोरी जो अंडरस्टैंड करी सको आ, ये स्टोरी अस वो दस दिया कि फिक्र करना बहुत जरूरी है, हमेशा है अपनी फिक्र करते हैं, है ना, अपने परिवार री फिक्र करना जरूरी है, बार रे मनु रे फिक्र करना कि ऐसा जरूरी है, ताई ता शो तो ये हिमाचल हिमाचल रहना क्या है, दुए रे हेल्प कर ले, दुए रे मदद कर ले और प्यार होगी गल कर ले, ता ये हिमाचल की ऐसा हिमाचल रह सकता है, विनम्रता होगी गल करने में कुछ और ही मजा है, शो तो तुंदे संस्कार छलक देन विनम्रता होगी अगर तो है कर कभी गल कर दे, तुंदे पेरेंट है तुसु क्या कुछ सिखोरा, तुंदे पेरेंट है तुसु क्या कुछ दसुरा, ये विनम्रता छलक दिया, ये तुंदे गलबात करने वे तरीके होगी कि ऐसा पता लग गंदा। तो स्टोरी यही सिखाती है सू कि अपनी केयर जरूर करा, लेकिन जिस प्रकार होगी ये व्यक्ति हर किसी की केयर करू करता तो मतलब ये केयर और कॉमन सेंस भी थी वो ले सकता है कि इतनी अपनी कॉमन सेंस से यूज़ करू कर देती है और केयर करू कर देती है दुबेरे, तो ब्राह्मण भी ना करी था कि भाई तू है बारह रे बंदे रे इतनी केयर करू करता, तो घर रे बंदे रे कितनी केयर करता बोला, है ना, तो केयरिंग इज़ वेरी वेरी गुड थिंग, बड़ी अच्छी चीज़ आ केयर करना, अक्की दुए री परवाह करना, अक्की दुए री केयर करना, सेवा करना सियाने री और केयर करना हल्के मोटे री केयर करना बहुत जरूरी है। सो तो रिश्ते खरे बंदे रिश्ते पक्के बंदे न और रिश्ते अच्छे चलते हैं, वक्त रे कोई पता नहीं होता, सो तो कहने ने वक्त किया सो बदले गया अच्छा। बहरहाल हिंदे अगले श्रोता सूगी कनेक्टेड इन पुछदन कुंड बलुंदन, नमस्ते जी। हेलो नमस्कार जी।
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, ठीक ना?
1: हां जी।
0: अच्छा जी कौन बोल लंदे ना और कड़ी तो बोल लंदे?
1: मैं साक्षी बोल रही हूं, ध्यान से नहीं आ
0: रहा। अच्छा कर लगुरन
1: कहीं आ रहा कि तुम्हें से?
0: अच्छा कुंदन की थोड़ा जी
1: निके निके हाथड़ू,
0: निके निके हाथड़ू, निके निके हाथड़ू।
1: हाँ जी।
0: चलिए ठीक है जी, जरूर होने लेते सुए की था ना जी।
1: हाँ जी।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहने सो चल रही हैं। तो आइए शो तो कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंज होने तू सभी हो पहले ये प्यारे दे गीत और फिर तत्थों बाद चलते हैं शो तो थोड़ी करी आगू बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सोगी गूंज अपने पन रही और गूंज प्यारे प्यारे जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता सोगी बन रहे हैं त्यारे सभी रही। तो फिलहाल ये जो स्टोरी आए होना है शो तो होप सो कि तू सब भी जो किया सो तू सब भी जो किया सो कुछ ना कुछ असु सब भी जो किया सो कुछ ना कुछ सिखाए करेगा छू कर दे बुने कुछ ना कुछ किया सो दे करेगा छू कर दे बुने तो ये इंदा मकसद रंदा श्रोताओं स्टोरी सुनाने रहा किया है थोड़ा करी मोटिवेट किया ना सो पूछेगा अन चीजा जो लेकर बहरहाल तो सब बनरू ने समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा हर जे सचिन कपूर सो गए हूँ कर दिन बहरहाल लेके चलते तू सो और हूँ दिन ये प्यारे

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर तो ऐसा बी ट्यून कर रहा वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर हाथुंदा अपना वेड़ियो जो कि फिलहाल तो श्रोताओं तो सुधों इजाज़त लेने का समय की आसो भुचे गोहा और तू सब ये बस ये बोलना चाहना कि माता पिता री सेवा ज़रूर करा और बुजुर्गों की सेवा ज़रूर करा श्रोतों अपने कम्मा सो की प्यार किया सो अवश्य करा और माता पिताओं की प्यार किया सो अवश्य करा ता बरहाल अब क्या करना लेने बहने इजाज़त और इजाज़त ले लेंदे ता नमस्ते धर्मशाला और हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे और ये जो आज है स्टोरी तू सू दस ता इं जरूर बना कर जो कि भी इंटर कर्म होंगे ने शो तो अह अपने कर्म कमाते हैं जहने भी कसकीरी बुराई करू करते हैं कसकीरा बुरा करू करते हैं एक कसकी गाली दिच्छू करते हैं या कुछ भी करू करते हैं तो सो अह अपने कर्म के असो कमाते हैं है ना कसकी मारू करते हैं कसकी कुछ भी करू करते तो सो सब अह अपने बुरे कर्म किया सो करू करते हैं और याद रखे शो तो कर्मारा हिसाब किया सो जरूर बुना सो अच्छे बना सच्चे बना और प्यारे बना इन्हें शब्द था सचिन कपूर तुझ तो ले लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार। रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट ने दिए ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर चलाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश। 2047 तक 450 मिलियन टन अनाज उत्पादन की चुनौती। एनएच पर जल्द मिलेगी मदद, 10 मिनट में पहुंचेगी एम्बुलेंस। मई चुनाव में जून में जनगणना, ड्यूटी देंगे शिक्षक। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ से शिमला रूट पर बेहतर हवाई कनेक्टिविटी को लेकर केंद्र सरकार को ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर चलाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि वर्तमान में उड़ान योजना के तहत संचालित सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा यात्रियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी ने कहा कि वर्ष 2030 तक देश को 400 और 2047 तक करीब 450 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करना होगा। इसके लिए उर्वरक उद्योग को अपनी सोच बदलनी होगी। अब लक्ष्य केवल किसान नहीं बल्कि पौधे की जड़ होना चाहिए ताकि सही समय पर सही मात्रा में पोषक तत्व पहुँचाए जा सके। तमाम संस्थाओं और एजेंसियों के आंकड़े कहते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं के बाद गोल्डन आवर यानी कि एक घंटे के भीतर उपचार ना मिलने के कारण हर साल 50,000 से 75,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नेशनल हाईवे के उन 278 अति संवेदनशील स्थानों पर 10 मिनट के भीतर एम्बुलेंस पहुँचाने की योजना पर काम शुरू किया है, जहाँ लगभग 70% सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दावा है कि यहां एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम ठीक करने के बाद एनएचएआई बाकी क्षेत्रों पर भी उसी तर्ज पर काम करेगा। विषय गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग कई कदम उठा रहा है, बावजूद इसके इन दिनों स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था चरमराई हुई है। इसका मुख्य कारण शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों में तैनात किया जाना है। मई में चुनाव ड्यूटी के कारण शिक्षकों की उपस्थिति में कमी आ रही है, तो जून में जनगणना कार्य में भी उन्हें जुटना होगा। शिक्षा विभाग पर स्थिति से चिंतित है, लेकिन चुनाव और जनगणना ड्यूटी से इनकार करने की स्थिति में नहीं है। पश्चिम एशिया संकट के कारण दुनिया के 40 से अधिक देश वाहनों के ईंधन के लिए बायोफ्यूल पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पाम ऑयल से लेकर सोयाबीन तेल के वैश्विक दाम लगातार मजबूत हो रहे हैं। पाम ऑयल का इस्तेमाल साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे आइटम के उत्पादन में किया जाता है। इसके महंगे होने से इनकी कीमत भी कंपनियां बढ़ा चुकी हैं या बढ़ाने वाली हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार लातूर की आरसीसी कोचिंग के संचालक शिवराज मोटगांवकर उर्फ एमसर को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि वो लातूर के खोपे गांव शिवार में 8 एकड़ जमीन पर स्कूल कॉलेज शुरू करने वाला था। बहुमंजिला इमारत का निर्माण तेजी से चल रहा था। सीबीआई उसके फंडिंग सोर्स, जमीन खरीद और आर्थिक लेन देन की भी जाँच कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिलने पर शिक्षा विभाग, शिक्षकों और छात्रों को बधाई दी है। शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश ने 7 स्थानों की छलांग लगाते हुए देश भर में 13वें स्थान से 6ठा स्थान हासिल किया है। वहीं राज्यों की श्रेणी में प्रदेश 3रे स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी निकायों में हुए चुनाव के बाद अब चुनाव लड़ने वाले सभी 1147 प्रत्याशियों को चुनाव के खर्च की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। राज्य चुनाव आयोग ने एक महीने में ये सभी जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों, चाहे वे चुनाव में विजेता रहे हों या फिर चुनाव हारे हों, सभी को चुनाव खर्च से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
अखिल भारतीय दवा विक्रेता संगठन के आह्वान पर बुधवार को प्रदेश में दवा विक्रेताओं ने 24 घंटों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। ऑनलाइन दवा बिक्री, ई फार्मेसी कंपनियों की भारी डिस्काउंटिंग और नकली दवाओं की बिक्री के विरोध में प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर बंद रहे। प्रदेश केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव पंडित ने बताया कि प्रदेश में करीब 10,000 दवा विक्रेताओं ने हड़ताल में भाग लिया। शहरों में सरकारी अस्पतालों की दवा दुकानों के सहारे व्यवस्था किसी तरह चलती रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंचायत चुनावों को लेकर बनाई गई पोलिंग पार्टियों के ग्रुप को लेकर सवाल उठने लगे हैं। महिला और पुरुष के अलग अलग ग्रुप बनाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा कपल केस में एक ही चुनावी ड्यूटी लगाने की मांग की जा रही है, ताकि वे अपने बच्चों की देखभाल भी कर सके। यही नहीं, चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों को वोट डालने की व्यवस्था भी चुनाव आयोग को करनी चाहिए, ताकि वे भी अपने मत का प्रयोग कर सकें। हिमाचल प्रदेश द्वारा पंजाब के वाहनों पर लगाए जा रहे प्रवेश टोल को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब पंजाब की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। पंजाब सरकार और विभिन्न संगठनों के बीच 13 अप्रैल को हुई बैठक के बाद एक विस्तृत प्रतिकारी टोल ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसमें केवल निजी वाहनों को ही नहीं, बल्कि हिमाचल के सरकारी और आधिकारिक वाहनों पर भी टोल लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस ड्राफ्ट को अधिवक्ता उत्तांश मोंगा ने तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई होने लगे हैं। सप्लाई पूरी ना आने के कारण कई जगहों पर पेट्रोल पंप खाली हो गए तो कई जगह खाली होने के कगार पर हैं। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में पहली बार 10वीं का परिणाम ड्यूल परीक्षा प्रणाली के तहत निकाला गया। अब छात्रों को 7 में से जरूरी 5 विषयों में से 3 में पास होना अनिवार्य है, जबकि 2 विषयों में फेल होने पर जून में एग्जाम देने का मौका मिल पाएगा। इसके लिए 25 मई के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन का मौका छात्रों को स्कूलों की ओर से प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया है। जो भी विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, अब उनके पास 23 मई तक का समय है। एचपी सेट एडमिट कार्ड 20 मई 2026 की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने हिमाचल प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना एचपी सेट का एडमिट कार्ड 2026 लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जन्मतिथि की मदद से डाउनलोड कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती अब केवल खेती का विकल्प नहीं रही, बल्कि गांव की आर्थिक तस्वीर बदलने वाली नई क्रांति बनती जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बड़ा सहारा देते हुए इस साल 63,000 किसानों और बागवानों से प्राकृतिक उत्पाद खरीदने का लक्ष्य तय किया। सरकार की इस पहल से हजारों ग्रामीण परिवारों के लिए आय और रोजगार के नए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। विश्व के मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को हमेशा एक शांत, सुंदर और सौहार्दपूर्ण राज्य के रूप में पहचान मिली है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और व्यवस्थित जीवन शैली देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। लेकिन अब पर्यटन सीजन के दौरान राजधानी शिमला सहित कई सार्वजनिक स्थलों पर लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन प्रदेश की छवि पर सवाल खड़े करने लगे हैं। गर्मियों के मौसम में जब बड़ी संख्या पर्यटक हिमाचल पहुंचते हैं, उसी दौरान शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ धरने, नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन आम दृश्य बन चुके हैं। राजधानी शिमला में सहव कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कचरा प्रबंधन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। बुधवार को छठे दिन भी सहव कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिससे नगर निगम की मुश्किलें बढ़ गई है। अब एक नजर डालते हैं मौसम पे। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र भीषण गर्मी और लू की चपेट में आ गए हैं। ऊना में बुधवार को दिन का पारा
समय बाजार सूने नजर आए। इसी के साथ आज का ये मुख्य समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने,

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम अपने अपने रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। जी हाँ, श्रोताओ पहुंच चुके हैं रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओ, पूरे दो घंटे का सफ़र आपके साथ रहेगा। इस दो घंटे के सफ़र में करेंगे हम जानकारियाँ भी आपके साथ साझा और आपका करवाएंगे मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के संग। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए कार्यक्रम का पहला गीत आपकी नज़र करते हैं, तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ अभी आपके साथ साझा करनी है। श्रोताओं, ज़िंदगी की बात करें तो कहते हैं ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है तो थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा खुद दूसरों पर भरोसा मत करना क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा होता है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारी सखियाँ मिलती हैं और बहुत सारे दोस्तों के साथ साथ और भी लोगों से मिलना मिलाना होता है। तो कभी ज़िंदगी हमें हंसाती है तो कभी रुलाती भी है और ये हमारी ज़िंदगी की सीख हमें देकर जाती है। और रही बात दूसरों से मिलने से, तो कई बार क्या होता है हमारे अपने या कोई भी जैसे दोस्त मित्र सखी सहेली कोई भी मिल जाए तो हमें उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जिन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं वो एक दिन हमारा भरोसा जो है तोड़ देते हैं और जब वो टूटता है भरोसा तो बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि जैसे क्या कर लें, क्या हो गया हमारे साथ, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में शुद्ध चलती हैं। और मुझे लगता है ऐसा आपके साथ भी होता होगा क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, सभी के साथ एक जैसा होता है और इन्हीं चीज़ों से हमें सीख मिलती है। तभी तो किसी ने कहा है कि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है, इसलिए हर किसी के साथ हमें उतना ही रिलेशन रखना है जितना से हमारी जो है निभ जाए और हर किसी से बात करें, हर किसी से अच्छा व्यवहार करें लेकिन एक लिमिट तक। लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, चाहे खाने पीने की चीज़ की बात करें, चाहे भरोसे की बात करें, खाने पीने की चीज़ भी। अगर हम चीनी की बात करें, ज़रूरत से ज़्यादा ले ले तो शुगर हो जाता है और नमक ज़रूरत से ज़्यादा ले ले तो बीपी बढ़ जाता है। तो इन श्रोताओं की कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को नुकसान ही पहुंचाती है। तो हर चीज का लिमिट में इस्तेमाल किया जाए तो हम सभी के लिए बेहतर होती है। तो श्रोताओं, अपनी बातों को थोड़ा सा देते हैं विराम और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में, क्योंकि बहुत सारी बातें सुकून के साथ आपके साथ करनी है। श्रोता, शाम का समय है और चाय की कप में थोड़ा सा सुकून मिल जाए तो बैठकर पीने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। कहते हैं चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, कुछ पल सुकून के भी होते हैं। जी हाँ श्रोताओं, जब भी हम कहीं थक जाते हैं तो दो पल के लिए हम चाहते हैं कि चाय का कप मिल जाए तो थोड़ी सी राहत मिल जाए, थोड़ी सी थकावट उतर जाए। किसी की भी सर दर्द होती है तो अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, अरे सर दर्द हो रही है, चाय का कप मिल जाता तो अच्छा होता। कुछ काम करते हुए थक जाते हैं उस समय भी हमें चाय चाहिए होती है। चाय एक बहुत ही अच्छा शरीर को रिलैक्स देने वाली चीज़ है, जिसे पीकर थोड़ा सा हम जो है अच्छा महसूस करते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं। सुबह की शुरुआत की बात करें तो चाय से होती है, शाम ढलने पर हम चाय पीते हैं। भाई चाय का साथ बहुत ही प्यारा और मीठा होता है, इसी मिठास को और बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। गीत से पहले आपको बता दें श्रोताओं कि आज भी चाय की बात कर रहे हैं तो आज इंटरनेशनल चाय दिवस है, तो और भी कार्यक्रम में बातें करेंगे। फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत, आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

14 इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चाय की चुस्कियाँ अभी बाकी हैं। बहुत सारे श्रोताओं के हाथों में तो अभी भी चाय का प्याला होगा और चाय पी रहे होंगे और हल्की सी मुस्कुराहट जो है उनके चेहरे पर आ रही होगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भाई आज हम चाय पी रहे हैं, हमारे दोस्तों को कैसे पता चल गया है कि हम चाय का प्याला हाथ में लिए बैठे हैं। जी हाँ श्रोताओं, चाय का समय हो चुका है। वैसे तो 4 बजे के बाद हम किसी भी समय चाय पी सकते हैं, लेकिन हमारे जो कामकाजी श्रोता हैं, चाहे वो खेतों में काम करने वाले हों, चाहे जो है नौकरी पेशे वाले हों, वो धूप ढलने के बाद चाय पीते हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारे दिन की थकावट होती है और चाय से वो थकावट उतरती है। श्रोता, चाय की बात आज हम कर रहे हैं, तो चाय दूध के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है। ये कैमेलिया साइनेसिस नामक पौधे की पत्तियों से बनता है। अपने बेहतरीन स्वाद और ताजगी के लिए मशहूर चाय न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय ड्रिंक है। और श्रोता, चाय के इतिहास की अगर बात करें तो चाय का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि 2732 ईसा पूर्व में चीन के शासक शेग नुंग ने गर्म उबलते पानी में गलती से कुछ जंगली पत्तियाँ गिर गई। पानी का रंग और खुशबू बदलने के बाद जब राजा ने उसे पिया तो उन्हें ताजगी का एहसास हुआ और उस तरह चाय की खोज हुई। भारत में आधुनिक चाय उद्योग की शुरुआत अंग्रेज़ों के समय में असम में हुई थी। तो श्रोताओ, ये तो थी जानकारियाँ अभी बहुत सारी आपके साथ साझा करनी है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं कि विराम और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन। तो आइए कार्यक्रम में छोटा सा लेते हैं विराम। आप कहीं जाइए क्या नहीं, लौट कर हम फिर से वापिस आएंगे और ढेर सारी जानकारियाँ अभी

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोता, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारी बातचीत जो है बहुत सारे विषय को लेकर आज होगी, लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। हिमाचल की हरित आवरण में वृद्धि के दृष्टिकोण, प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखिंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी पहल के अनुरूप वन विभाग द्वारा राज्य के पारिस्थितिक को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार की बहुआयामी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समग्र कार्य योजना तैयार की गई है और हिमाचल की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियाँ अभी और भी साझी की जाएंगी, लेकिन कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ, तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चाय की बात हम कर रहे थे और चाय कई प्रकार की होती है, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी, और इसकी पत्तियों को सुखाकर और प्रोसेस करने का तरीका जो है अलग अलग होता है। काली चाय की बात की जाए तो ये सबसे आम है। इसका उपयोग दूध और मसालों वाली चाय बनाने में किया जाता है। हरी चाय ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है क्योंकि इसे प्रोसेस नहीं किया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मानी जाती है। अब श्रोताओं, मसाला चाय की बात की जाए तो मसाला चाय पीने का सर्दियों में एक अलग ही मज़ा होता है। काली चाय में दूध, चीनी के अलावा अदरक, इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च जैसे मसाले डालकर इसे बनाया जाता है और इसकी सौंधी सौंधी खुशबू जो है मन को मोह लेती है। और थोड़ी सी हम चाय की चुस्कियों की बात और बढ़ा लें तो चाय में पॉलीफिनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ऊर्जा और सतर्कता की बात करें श्रोताओं, तो इसमें मौजूद कैफीन और कैफीन नामक यौगिक हमें सतर्क और ऊर्जावान भी बनाते हैं। पाचन में इम्यूनिटी की बात करें तो मसाला चाय में डले मसाले, लौंग, अदरक पाचन को बेहतर करते हैं और सर्दी खांसी से हमें काफ़ी हद तक आराम भी दिलाते हैं। जी हाँ श्रोताओ, हुए ना चाय के कितने सारे फायदे। तो चाय के फ़ायदों के साथ हम थोड़ा सा कार्यक्रम में और कुछ गीत संगीत का भी मज़ा ले लेते हैं। तो क्यों ना बढ़ते हैं गीत संगीत की और लुत्फ़ उठाते हैं गीतों का।

श्रोतो, इस गीत के बाद फिर से हमारी वापसी होती है और कार्यक्रम में कुछ जानकारियां और आपके लिए हम लेकर आए हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया है कि प्रदेश सरकार ने 20 मई 2026 से सर्किट हाउस हमीरपुर स्थित 21 बैंड वाली डॉर्मीटर को HPPWD ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म में शामिल कर दिया है। इस सुविधा के लिए हिमाचली निवासियों के प्रति बेड 100 रुपये तथा गैर हिमाचली निवासियों के लिए प्रति बेड 200 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया है कि इस सुविधा से शुरू होने में प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य शैक्षणिक उद्देश्य से आने वाले विद्यार्थी विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। विद्यार्थी हिम अतिथि होटल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग पर ठहरने के लिए सस्ती तथा सुविधाजनक आवासीय सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को हम थोड़ा सा फिर से देते हैं विराम और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हम बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। आज की बात करें तो भारत में हर साल आज के दिन राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को, विशेषकर युवाओं को, आतंकवाद और हिंसा के खतरों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही साथ ही ये दिन शांति, मानवता और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने का संदेश भी देता है। श्रोताओं, ये दिन भारत के स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष में मनाया जाता है और 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरवंदूर में एक आत्मघाती आतंकी हमले में उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। इस स्मृति और देश की शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार ने हर साल इस दिन को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को देते हैं विराम और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। इस गीत को श्रोताओं आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: इसी गीत के साथ साय के 7 बजे हैं और कार्यक्रम में समय हो गया है प्रादेशिक समाचारों का।
1: भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक

0: भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुवन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में थोड़ा सा लेते हैं एक अंतराल।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: शोधों इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फिर से हम थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप अपनी जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस की हम बात कर रहे थे, तो मानव सभ्यता के इतिहास केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों, सांस्कृतिक उत्कृष्ट विकास और प्रगति की गौरव गाथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संघर्षों, हिंसा, युद्धों और मानवीय त्रासदियों का भी मौन साक्षी रहा है। समय के प्रभाव में मानव समाज को समाजवादी विस्तार, वैचारिक टकराव और सत्ता संघर्षों के अनेक रूप दिखे हैं, पर आधुनिक युग में कोई संकट सबसे अधिक जटिल, व्यापक और चिंताजनक रूप से उभरा है तो वो है आतंकवाद। ये केवल हिंसा, विस्फोट, रक्तपात का व्यापक नहीं, बल्कि ये भय, असुरक्षा और अस्थिरता के माध्यम से मानवता, सामाजिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों का सुनियोजित प्रभाव करने वाली एक विनाशकारी प्रवृत्ति है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को फिर से थोड़ा सा यहीं पर रोकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे आतंकवादी विरोधी दिवस के महत्व के बारे में। श्रोता, ये दिन उन सभी निर्दोष लोगों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने आतंकवादी हमलों में अपनी जान गंवाई है। जागरूकता की श्रोता बात करें तो इसका लक्ष्य आम जनता को ये याद दिलाना है कि आतंकवादी जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सभी नागरिकों को आपसी मतभेद भुलाकर शांति, प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की लिए प्रेरित भी किया जाता है आज के दिन। और इस अवसर पर सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, शिक्षण संस्थानों और पुलिस बलों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और शांति बनाए रखने की विशेष शपथ भी ली जाती है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियां को थोड़ा सा देते हैं यहां पर विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

चलो इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए कार्यक्रम में कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, माफ कीजिएगा, हिमाचल के हरित आवरण में वृद्धि की दृष्टि गत प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शिता पहल के अनुरूप वन विभाग द्वारा राज्य की परिस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है और सरकार की बहुआयामी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र कार्य योजना तैयार की गई है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा हम यहीं पर रोकते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की। श्रोताओं, आतंकवाद दिवस की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड डे ऑफ कल्चर की, जिसे आमतौर पर संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कहा जाता है। हर साल आज के दिन इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के विभिन्न सांस्कृतिक और विविधता के महत्व को समझाना है, उनका सम्मान करना और उनके बीच आपसी संवाद को बढ़ावा देना है। विविधता के जश्न की श्रोताओं बात करें तो ये दुनिया के समृद्ध और अलग अलग संस्कृतियों का जश्न मनाने का एक अवसर भी प्रदान करता है। संस्कृतियों के बीच की दूरियों को कम करना, शांति और सतत विकास को हासिल करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ये लोगों को अपनी और दूसरों की संस्कृति के महत्व देने के लिए प्रेरित भी करता है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ कार्यक्रम में फिर से आप सबको लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में। तो आइए मिलजुल कर एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701-8170-1811-170-91। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसे रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए है, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिल्पा वैक्टा ने आज आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर उपायुक्त कार्यालय परिसर में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर सभी उपस्थित अधिकारी तथा कर्मचारी ने हिंसा का विरोध करने का संकल्प लिया है। एडीएम शिल्पा वैक्टा ने कहा है कि आतंकवाद समाज और मानवता के लिए गंभीर चुनौती है तथा उसके प्रति जागरूक तथा एकजुटता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को आतंकवाद और हिंसा जैसी प्रवृत्तियों को दूर रखने तथा समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने सामाजिक सौहार्द, अपनी समझ तथा मानव जीवन मूल्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लिया है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: श्रोता इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है रात्रि के 7:45 और आइए आपको लिए चलते हैं समाचारों की ओर।
1: और प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते लू का कहर जारी, ऊना में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से पार। अब समाचार विस्तार से। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। नगर निगम महापौर और सहब कर्मियों के बीच हुई बातचीत में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान कर्मचारियों को लिखित आश्वासन देते हुए कहा कि सभी सहमत मांगों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
2: इनकी डिमांड्स थी, हमने 10% की वृद्धि को भी माना। ईजीएम 4 जून को होने तय हुई है, उसको हम उसमें फाइनल करेंगे। एक डिमांड ये भी आई जो हमारे कर्मचारी सुपरवाइजर जिनको टर्मिनेशन का लेटर इशू हुआ है वो किया जाए, उसमें मैंने लिखा है और उसको मिश्र साहब को भी भेजा है साथ साथ कि आप इसको जो भी इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके रिवोक भी किया जाए। हमारा एक पारिवारिक एक मसला जिस तरह से होता है उसको बैठ के हमारी सारी चीजें सॉल्व हुई।
1: दूसरी ओर सहब सोसाइटी के अध्यक्ष जसवंत ने कहा कि उनकी मांगों पर सहमति बनने के बाद अब कल से सभी सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे।
3: जो मेयर साहब के साथ सहमति बनी हुई है कि जो 10% है वो मेयर साहब की तरफ से क्लियर है कि हम देंगे, और इसे जो है एजीएम में ले जाना पड़ेगा। जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो रोड स्वीपिंग स्टाफ है, उनको 4/9/14 नहीं लगता था, उसके लिए भी इन्होंने हम इवर दिया कि वो भी हम जो है इसको कर देंगे। और साथ में स्पेशल लीव जो मिलती थी हमारे 15 डेज की, वो भी जो है इन्होंने हम इवर दी है कि इसको भी हम दोबारा चालू कर देंगे। और जो हमारे 41 लोग टर्मिनेट किए गए हैं उनको भी जो है मेयर साहब ने यहाँ से लिख के भेज दिया है कमिश्नर साहब को, इनकी सेवाएं जो है कल से शुरू की जाए और कल से जितने भी सहायक कर्मचारी है वो अपने अपने कार्य पे जाएंगे।
1: गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से सफाई कर्मियों के हड़ताल के चलते शिमला शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने वाले चुनावों के लिए प्रचार लगातार जारी है। इन चुनावों के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में मतदाताओं को रिझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होंगी। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं, जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60,00,000 मतपत्र छपवाए गए हैं। चंबा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले की 319 ग्राम पंचायतों में 3 चरणों में चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मुकेश रिप्सवाल ने कहा कि पंचायती राज चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टियों के अलावा मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं।
4: हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो ऑलमोस्ट हमारे हर गांव के अंदर उपस्थित हैं। तो जो पोलिंग पार्टीज हैं जो कि 26 को, 28 को और 30 मई को अपने अपने स्टेशंस पे जाके इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगी, तो जो पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग है, साथ में जो हमारे एआरओस हैं जो कि काउंटिंग के प्रोसेस को ओवरसी करेंगे, उनकी करंटली जो ट्रेनिंग है वो एसडीएम लेवल पे इम्पार्ट की जा रही है। फाइनल ट्रेनिंग हमारी 24 तारीख को होती है, उसके बाद जो पार्टीज हैं वो अपना सामान मटेरियल लेके अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए मूव कर जाते हैं। पोलिंग स्टेशंस पे मतदाता आते हैं के लिए भी जो बेसिक वहाँ पे मिनिमम फैसिलिटीज हैं, रैंप की उपलब्धता प्लस बिजली पानी एक्सेट्रा, ये सब भी हर जगह पे सुनिश्चित कर लिया गया है।
1: उधर सिरमौर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिले में कुल 1,641 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहाँ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में आयोजित आतंकवाद विरोधी दिवस कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी के युग का सूत्रपात किया और पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण भी प्रदान किया।
5: राजीव गांधी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें युवा सोच को मजबूत, उन्होंने युवाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, 18 साल की उम्र के युवा साथियों को वोट देने का अधिकार दिया, क्योंकि लोकतंत्र में वो चाहते थे युवाओं की भागीदारी दिया। उसके बाद महिलाओं को 73वां और 72वां संविधान संशोधन बिल लेकर महिला रिजर्वेशन की बात की।
1: इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश की एकता व अखंडता की शपथ ली। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ऑफ स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनाए गए मॉडल का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने शहरी विकास क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जल्द ही हिमाचल से शहरी विकास विभाग, नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक में शहरी विकास कार्यों का अध्ययन करने जाएगा और इन कार्यों से प्रेरणा लेकर इसके सफल मॉडल को हिमाचल में अपनाया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड के लिए केंद्र से प्रस्तावनाएं अनुमोदित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते लू का कहर जारी है और मैदानी इलाकों के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऊना आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह हमीरपुर के नेरी में 41, सुंदरनगर में 39.9, मंडी में 38.8, सोलन में 36 और शिमला में 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार कल 22 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में आगामी 2 दिनों के दौरान आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने रेणुका जी बांध प्रबंधन पर विस्थापितों की मांगों को लगातार अनदेखा करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे पिछले 17 वर्षों से अपनी मांगों को प्रबंधन के सामने उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांध प्रबंधन ने NGT के आदेशों को दरकिनार करते हुए सुरंगों का निर्माण कार्य शुरू किया और NGT की शर्तों को भी पूरा नहीं किया। योगेश ठाकुर ने कहा कि रेणुका जी बांध प्रबंधन विस्थापितों पर जबरन कई शर्तों को थोप रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
6: रेणुका बांध में जो हमारे विस्थापित भाई इफेक्टेड जो हो रहे हैं, उनके साथ जो है पिछले 17 सालों से अनदेखी की जा रही है। तो हमारी मांग यही है कि NGT के मापदंडों को जो हमारा बांध प्रबंधक है उसको फॉलो करे, जो भी है कंडीशन है ये इसको हटाया जाए और बिना कंडीशनों के हमारी जो हाउस लेस के लिए जो भी हमें पैसा मिलना है वो बिना कंडीशनों को हमें मिले।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, कल से सभी सफाई कर्मी अपने काम पर लौटेंगे। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार जारी। पहले चरण के मतदान के लिए 24 व 25 मई को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन किए गए अर्पित। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कर्नाटक स्मार्ट सिटी के सफल मॉडल को हिमाचल में अपनाएंगे। और प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते लू का कहर जारी। ऊना में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से पार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार। इस प्यारे से गीत को आप तक पहुंचाते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं हमने की आपके साथ ढेर सारी बातें। उम्मीद है आपको पसंद भी

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।

0: सफर कैसे रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो पोषण।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, पर फिर भी वो कहता है

0: तब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
1: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
2: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
3: और मैं हूँ विकास।
2: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
3: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
2: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
1: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
4: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
5: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
6: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
5: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
6: एक्सक्यूज मी सर।
5: क्या हुआ?
6: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
5: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
6: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
5: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। You can keep this book, but मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
6: 2 दिन बहुत है सर, इसे खत्म करने के लिए।
5: Sure.
4: ये लो बेबी चाय।
7: Thank you.
4: आपने आज की न्यूज़ सुनी?
7: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
4: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
8: Oh no.
7: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है?
4: पता?
7: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
4: और क्या।
9: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया। बिरजू बेटा, बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
2: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
2: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं।
2: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट?
2: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
2: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए है, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के पांच आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, पर फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाए तो उनका स्वागत करें और दिल खोल कर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।

0: ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
1: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे दो दिन में वापस चाहिए।
0: दो दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
1: श्योर
0: श्योर।
2: हेलो बेबी चाय।
3: थैंक यू।
2: आपने आज की न्यूज सुनी?
3: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
2: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
4: ओह नो।
3: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है?
2: पता,
3: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
2: और क्या।
5: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।

0: और कैसे रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया बिरजू बेटा, बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
2: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
2: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, कुवार लाए है, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े, इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
2: ये तो सोने से भी अनमोल है।
3: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
4: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
5: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
4: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
6: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
7: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
8: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
9: और मैं हूँ विकास।
8: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
8: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
7: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाए तो उनका स्वागत करें और दिल खोल कर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
10: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
11: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
12: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
11: कहा तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
12: एक्सक्यूज मी सर।
11: क्या हुआ?
12: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बी ए एम ए की डिग्रिया है सर।
11: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
12: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
11: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
12: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
11: श्योर
12: श्योर सर।
13: हेलो बेबी चाय।
14: थैंक यू।
13: आपने आज की न्यूज सुनी?
14: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
13: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
15: ओह नो।
14: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
13: और क्या।
16: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

हाय हमें यू देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है इसी का कर्म मोहब्बत नाम हो जाए।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।